0: है।
1: अय अल्लाह तजल्ला तेरी शान का कूबकू है, जिधर देता हूं उधर तू ही तू है। अय अल्लाह तजल्ला तेरी शान का कूबकू है, जिधर देता हूं उधर तू ही तू है। बर्द बारा अब्र

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा न होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
2: 100 FM.
0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
3: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
4: This message was brought to you by FM 100 Pakistan.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
2: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए पीटीए और ऐसे अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
4: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैस कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है। और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराहकुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदामात जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein. Aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat to zawabit lagu hain.

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
3: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
4: It's shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
5: This program is brought to you by
6: Safre Haj mein aapka khidmat guzar. Jahan khwab वहाँ HBL
7: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
6: एंड
8: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली
6: एंड
9: सरसब्स नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
10: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए तरतीब देते हैं। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
12: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
13: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے،
14: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जस्ट कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जस्ट कैश है ना।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहाँ HBL
4: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
3: एंड
5: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली
3: एंड
6: सरसब्स नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
7: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365

0: से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली

0: the bank. Easy wala bank. PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein. Aur paaye free shock Android TV box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hai.
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में ₹15,000 या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या ₹50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: Reliable Bank. Easy Wala Bank.
1: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
3: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ.
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL
6: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
5: And
7: try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
5: And
8: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
9: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM247365.
11: Let's celebrate
12: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
13: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: Viva la Bank.
1: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: PTCL Flash Fiber आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू है।
3: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata par JazzCash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
4: At shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhaago!
5: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द JazzCash ऐप नाउ।
6: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए JazzCash है ना?
7: This program is brought to you by
8: Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL
9: and Phoenix laga aur bhul ja
8: and
10: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally
8: and
11: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
12: FM 100, like us on facebook.com/FM247365
13: FM 247365

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
3: This program is brought to you by
4: Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL
5: and Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
6: And try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
7: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet taja.
8: Khawateen o hazrat, manshiyat wo zehre qatil hai jiski sanjeedgi ka ehsaas insaan ko tab hota hai jab ki zehr hamari ragon mein zaid kar chuka hota hai. वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है, जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर दिल से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखे ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़्म एक कौम, एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: FM, your location for maximum music.
1: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवजा तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365. FM 100.
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.

0: की लगती है, तो वो बड़ा मजा आता है। और मैं बहुत सारे लोगों को जैसे देखते हैं ना कि कोई डिफरेंट तरह की दाल बना रहे होते हैं, तो बड़ा मजा आता है जान के। दादा आपने कभी बाहर के दाल चावल खाए?
1: बाहर के दाल चावल खाए हैं। आपको सदर का मैंने किस्सा बताया था, सदर में एक दाल चावल वाले हैं, वो उनका माशाल्लाह बड़ा काम चलता है। तो वो उन्होंने जब मेरे शो चलते थे, जब मैं दूसरे चैनल पे थी, तो मैंने एक दाल बनाई थी क्लासिक दाल, तो उन्होंने वो दाल देखकर, तो उन्होंने कहते थे मैं बड़ा परेशान था, काम नहीं था, नहीं था। तो घर आया तो बीवी ने दाल चावल बनाए थे, तो उसने कहा ये तो बड़े मजेदार से बने हुए हैं, तो कैसे बने? उसने बोला इस तरह से एक शो आता है उसमें से उसने बनाया। तो उन्होंने कहा तो आज वो माशाल्लाह सदर में कहते बहुत बड़ा उसका सेटअप है और वो दाल चावल का वो काम करते हैं, बहुत चलता है उनका।
0: चलो वाह भाई, तो बड़ी जबरदस्त बात है, जबरदस्त हो गया ये। देखिए किसी किसी की कुछ रेसिपीज कितने काम आती हैं कि उनके रोजगार का सबब बन जाती है वो। और वाकई में भाई दाल चावल की बात ही अलग है। अच्छा रिदा, बाहर की भी दाल चावल आपको बहुत सारी जगहों पर मिलेंगे, लेकिन हर किसी की दाल का आपको टेस्ट अलग अलग
1: अलग मिलता है। सही बात,
0: वो मजे का भी लग रहा होता है। वो घर की दाल से ना बहुत डिफरेंट दाल होती है।
1: असल में क्या है, आप दाल चावल में क्या होता है कि बाहर के लोग ना ज्यादातर इसमें चाइनीज नमक भी डालते हैं, अजीनोमोटो जरूर डालते हैं। उससे थोड़ा सा बिरयानी हमारे बहुत सारी जगहों पे, एक वो एक बिरयानी वाला है जो जिसकी बहुत मशहूर है, वो शायद महमूदाबाद साइड पे है ना, तो वो उनकी बड़ी, लेकिन वो इतना अजीनोमोटो उसमें डालते हैं, इतना होता है कि वो लोग बड़े शौक से खाते हैं, पसंद करते हैं।
0: सही बात,
1: उससे भी टेस्ट में काफी फर्क पड़ जाता है।
0: ये बात तो, और वो लोग जो है वो लौकी भी जरूर डालते हैं
1: बिरयानी में?
0: नहीं, बिरयानी में नहीं, दाल में।
1: अच्छा दाल लौकी वो तो अलग है।
0: हाँ मतलब ये दाल चावल में, क्योंकि हम लोग अक्सर मंगवा रहे होते हैं ऑफिस में, तो वो लौकी जरूर आती है।
1: वो चने की दाल होती है जिसको दालचा भी कहते हैं, कोई गोश्त भी उसमें डालता है, लेकिन वो चने की दाल लौकी अलग बनती है। और एक और मूंग मसूर की दाल जाता है चावल के साथ, ये या फिर काली दाल वो बनती है,
0: उसमें वो एक आध लौकी आ ही जाती है।
1: अच्छा
0: बिल्कुल ठीक है भाई। तो हमने दाल चावल पर काफी लंबा डिस्कशन किया, बिकॉज दाल चावल एक ऐसा, मैं कहूंगी कि क्या हम उसको कहेंगे, आइकॉनिक तरीन मील है जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है।
1: देखिये हर, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब, वो सबका फेवरेट होता है, हर कोई बड़े शौक से खा लेता है। और दूसरा ये कि थोड़ा सा ही सस्ता भी पड़ जाए, इतना महंगा नहीं पड़ता गोश्त के हिसाब से, तो उस वजह से। और दाल की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, लंबा पानी हो जाता है।
0: हाँ सही बात है, और इसे खाने में ना आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, तो मजा आता है इसको खाने में। बिल्कुल यही सूरत हाल है। और ये देखिए जी, जरा हमारी गुफ्तगू का सिलसिला रिदा के दाल चावल से शुरू हुआ था कि आज रिदा लंच में दाल चावल बना के आई। रिदा तो दाल चावल के साथ कोई साइड लाइंस भी हैं?
1: नहीं, वो घर में मैंने बताया ना, एक तो कीमा बनाया हुआ था, ठीक है, उसके अलावा अब ये कि घर में कुछ ना कुछ चटनियां तो बनी होती हैं, आलू बुखारे की, इसकी इसकी, तो वो फिर जिसने खाना होता है खा लेता है। मिर्चों का एक अचार बना हुआ रखा हुआ है तो वो टेबल पे ही पड़ा हुआ, तो किसी ने खाना होगा तो वो खा लेंगे। तो मतलब बस मेरा तो यही होता है ना, मैं तो अपने गले की वजह से नहीं खाती हूँ, लेकिन खा लेते हैं घर वाले, खा लेते हैं इस तरह से।
0: चलो भाई, यानी कि रिदा को अभी आज साइड लाइन पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल
1: घर में पड़े हुए। आलू बुखारे काफी सारे पड़े हुए थे, वो खट्टे बहुत थे, तो फिर मैंने कहा वो इस तरह से वेस्ट जाएंगे, तो मैंने उसकी आलू बुखारे की चटनी बनाई,
0: आलू बुखारे में
1: रेड वाली, रेड बिल्कुल सी थी। और एक और वो दूसरी चटनी थी, वो क्या नाम लेते हैं, धनिया पुदीना हरी मिर्च वगैरह, जब मैं टीवी पे लेके जाती हूँ ना धनिया पुदीना वगैरह, तो उसके पत्ते इस्तेमाल हो जाते हैं, तो कुछ बच जाता है, तो मैं फिर उसको जाया करने की वजह मैं क्या करती हूँ, उसकी चटनी पीस के रख लेती हूँ। तो वो फिर ये होता है कि जिसको चाहिए होती है तो वो खा लेते हैं उसके साथ, तो उसमें थोड़ा सा अनारदाना भी डाल देते हैं और लहसुन भी होता है, तो खाने को हजम भी कर देता है और फायदेमंद भी होती है वैसे भी, मतलब मजे की भी लगती है।
0: ये तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो गया, जबरदस्त हो गया भाई। रिदा के हमने साइड लाइन्स भी जान ली कि आपके पास जो है वो दाल चावल के साथ और क्या क्या मौजूद है। बिल्कुल ठीक है जी, और इसी के साथ साथ हम अपने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि जो रेसिपीज हमारे पास आ गई हैं उसे भी हम साथ ही साथ शामिल करेंगे और ऐड करेंगे कि कौन हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ऑलराइट जी, इसी के साथ साथ हमारे पास एक रेसिपी आ चुकी है कि मुझे आलू पालक की रेसिपी बता दे रिदा।
1: आलू पालक, हाँ ये भी बड़े मजे
0: मुझे बहुत पसंद है,
1: आलू पालक बहुत अच्छी बनती है। अच्छा जैसे क्या ना, आपने ले लेनी है तकरीबन 1.5 किलो पालक ले लेनी है और 1/2 किलो आलू ले लीजिएगा और 1 गड्डी आप मेथी की भी ले लीजिएगा, ठीक है। इन तीनों सब्जियों को पहले तो क्या कीजिएगा, पालक के पत्ते तोड़ लीजिएगा, ठीक है, और मेथी के भी पत्ते तोड़ के, उसके बाद उसको 2-3 पानी में अच्छे से धो लीजिएगा, ठीक है, काट के ना धोइएगा, पत्ते निकाल के उसको 2-3 पानी में एक पतीले में डालें, उसके ऊपर से ऐसे उठाएं, फिर दूसरे तीसरे, उससे होता है ना मट्टी नीचे बैठ जाती है। फिर उसके बाद आपने इसको बारीक बारीक काट लेना है, मेथी को भी पालक को भी, ये आपने बारीक बारीक काटना है, आलू को भी काट लेना। अब आपने क्या करना है, 1 पाव दही और 1 से 2 टमाटर ले लीजिएगा,
0: ठीक है,
1: पूरी 1 गड्डी आपने लहसुन की ले लेनी है, 6-7 आपने हरी मिर्चें ले लेनी है, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च और उसके साथ तकरीबन 1 चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच नमक,
0: ठीक है।
1: अच्छा आपने क्या करना है, आपने ऑयल गरम करना है, उसके अंदर आपने लहसुन की पूरी गड्डी डालनी है।

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: 100 FM।
4: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: पाकिस्तान में बर्ड से फैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने वर्ड से अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है, और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी जानने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, या ये 6 हिंसों का कोड भेजते। बाज़ औक़ात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए? अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा ہو یا پن لگا دیا گیا ہو. اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو-سٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کرے. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے, بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں, میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فال کریں. سیٹنگز, اکاؤنٹ, ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن, یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے, اکاؤنٹ تیزی سے فال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات, سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز, لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فال کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
7: FM 247 365.

0: ऑल राइट जी, सो वी आर बैक, सॉरी हम आ चुके हैं वापस और आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और साथ ही साथ इतला के लिए अर्ज है कि जी वक्त कम है और मुकाबला सख्त है क्योंकि प्रोग्राम कुकिंग स्पेशल अपने अख्तितामी मराहिल के करीब आ चुका है, तो इसलिए आप जल्दी से हमें मैसेज करें या कॉमेंट करें, इट डिपेंड्स ऑन यू कि किस तरीका कार के जरिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं। 3636 पर मैसेज करें या एफएम 100 के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो पेंडिंग मैसेजेस थे उनको हम शामिल करते हैं। हमें मैसेज करती हैं नौरीन तौसीफ, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम रिदा एंड मासूम सी सूरत वाली फातिमा,
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: कैसे मिजाज हैं, सदा खुश रहें, बहुत शुक्रिया, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मजे में हैं, आपके मैसेज का शुक्रिया। कहती हैं कि चिकन स्टेक की रेसिपी बता दें।
1: चिकन स्टेक की, चलें बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके लिए क्या है कि आपने ले लेना है, अच्छा मैं अभी मैं फातिमा से यही बात कर रही थी कि हमारे यहाँ ज्यादातर मतलब पहले तो चिकन हम लेते थे, जब भी तो हम चिकन ब्रेस्ट पीस का इस्तेमाल करते हैं, वो इतना हार्ड सा होता था, उसमें वो टेस्ट ही नहीं आता था, तो अब हमने ना ज्यादातर वो इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चिकन थाई पीस लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, आप उसको बोल दीजिएगा बोनलेस जो दे रहे ना थाई वाला दे देना, उसका बहुत मजे का टेस्ट आता है, तो वरना तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप चिकन ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं। अमूमन हम इस पर सोशल मीडिया भी देखते हैं तो ज्यादातर वो उन्हीं लोगों का बनाते हैं, लेकिन वो अंदर तक पकता नहीं, उसका जूसिस वो नहीं होता। तो हमारा जो भी आपने लेना आप पे डिपेंड करता है, आप आधा किलो वो ले लीजिएगा,
0: ठीक है।
1: उसके अंदर आपने एक खाने का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट, इसके साथ आधी चाय का चम्मच नमक, आधी चाय का चम्मच काली मिर्च, दो खाने के चम्मच आपने सोया सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, सोया सॉस, इसके साथ काली मिर्च, नमक, और साथ में आपने क्या करना है इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ये लगा के इसको मैरिनेट करके आपने रख देना आधे घंटे के लिए, ठीक है, आधे घंटे के लिए रख देना। उसके बाद आपने क्या करना है इसको ग्रिल पैन पे या पैन में जिससे भी थोड़ा सा ऑयल डालिएगा, ऑयल डाल के अब आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना, पका लेना ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, दो खाने के चम्मच वॉर्सटरशायर सॉस ले लीजिएगा, जब आपको लगे ना ये पक गया है तो वो ऊपर से डाल के इसको चूल्हा पर बंद कर लीजिएगा। अब इसके साथ एक व्हाइट सॉस भी बनती है, बहुत सारे एक सॉस ब्राउन सॉस भी बनाते हैं, ठीक है, और ज्यादातर व्हाइट सॉस बनती है। व्हाइट सॉस आप इस तरह से बनाएंगे, आप ले लीजिएगा दो कप दूध, एक खाने का चम्मच आपने मैदा, 50 ग्राम मक्खन, आधी चाय का चम्मच काली मिर्च, आधी क्वार्टर चाय का चम्मच नमक, आधी चाय का चम्मच ओरिगानो,
0: ठीक है।
1: आपने मक्खन को आपने मैदे के साथ भूनना है, जब वो भून गया तो अब आपने इसमें दूध डालना है, दूध के अंदर काली मिर्च, नमक, ओरिगानो डालकर अब इसको आपने चम्मच चलाते जाना है ताकि गाढ़ा सा हो जाए, जब ये गाढ़ा सा हो जाएगा थोड़ा सा आपने इसमें क्रीम भी शामिल कर लेनी है और चूल्हा बंद कर देना है, ये आपकी व्हाइट सॉस तैयार हो जाएगी। अब इसके साथ वेजिटेबल, गाजर हुई, इसके साथ आप शिमला मिर्च हो, आलू हो, जो भी आप इसमें साथ रखना चाहें उनको, आपने आलू को तो बॉयल कर लीजिए, बाकी सब्जियों को हल्का सा स्टर फ्राई करके वो इसके साथ, इस तरह से आपका चिकन स्टेक जो है तैयार हो जाएगा,
0: जबरदस्त हो गया।
1: अगर सही जो स्टेक इसका खाने का होता है तो वो अंडरकट का होता है, वो बड़े मजे का होता है,
0: वो ज्यादा मजे,
1: बहुत महंगा होता है तो वो जबरदस्त है। अच्छा, वैसे आप दूसरे का भी बना सकते हैं, आप जिस तरह से आप गोश्त ले लेंगे ना, जिस तरह ये होता है कि बोनलेस वाला जो गोश्त बगैर हड्डी का, तो उसको थोड़ा सा आपने पतले फ्लेस की तरह कट कर लीजिएगा, उसके अंदर आपने थोड़ा सा ये जो खाने का हमारा सोडा होता है ना वो लगाकर आधा घंटा छोड़ देना,
0: ठीक है,
1: आधा घंटा छोड़ दे, उसके बाद बाकी मसाले लगा के, तो ये चाइनीज वाले जो होते हैं ना वो लोग जब बीफ का इस्तेमाल करते हैं तो उसको गलाने के लिए वो लोग खाने का सोडे का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर भी बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट सा गल जाता है, तो आप ये भी ले सकते हैं। बीफ का तो एक अलग ही स्टेक का मजा, वो अलग ही है,
0: बिल्कुल सही बात है, ये तो है। खैर, ऑल राइट जी, तो नौरीन आपकी रेसिपी भी हमने शामिल कर ली है, और हमें जो है वो आज गुलशन खान जहान भी मैसेज करती हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप दोनों, बिल्कुल ठीक हैं, आप कहाँ हैं इतने वक्त से भाई, हमें ये बताएं जरूर। और रिदा हमारे पास एक और मैसेज आया, कहते हैं सलाम फातिमा खान एंड रिदा बाजी, आई एम उबैद, फातिमा हमारे लंच में आज बीफ पाए हैं, अरे वाह, बन रहे हैं, जबरदस्त हो गया ये।
1: असल में ना अभी थोड़ा मौसम चेंज हो गया तो लोगों ने जो अपने फ्रीजर में रखे हुए तो आहिस्ते से वो कह रहे हैं
0: बनाने का वक्त आ गया, जबरदस्त,
1: और मजा आता है थोड़ा अच्छे मौसम में,
0: अच्छे मौसम में पाए खाने का मजा ही अलग है। और भाई मेरे ख्याल से नमाज पढ़कर आएंगे तो फिर ये लोग पाए खाएंगे। और हमें आमना जैदी कहती हैं कि पाए की तरकीब बताने का बहुत बहुत शुक्रिया,
1: चले आप ट्राई करना, बस एक चीज का ख्याल रखें, उसको लंबा शोरबा ना करें, आप जितने अच्छे से गला के उसकी ग्रेवी थोड़ी कम करेंगे उतने ही पाए मजे के बनते हैं,
0: بالکل ٹھیک ہے, دس از آلسو امپورٹنٹ ٹو نو دس. تو یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے, وقت جو ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے اور ریسیپیز بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں, میسجز بھی آ رہے ہیں. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ بھئی آپ سب کی ریسیپیز کو ہم ایز سون ایز پاسبل شامل کر لیں اور آپ کو بتا دیں جو بھی آپ لوگ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. خیر دا, ہمارے پاس ایک اور میسج بھی ہے کہ مجھے ڈونٹ بتا دیں, کیا گھر میں ڈونٹ بن سکتے ہیں؟
1: جی بالکل بن سکتے ہیں. ڈونٹس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ لے لیجیے گا 2 کپ میدا, ٹھیک ہے, 2 کپ میدا لے لیجیے گا, اس کے اندر 1 چائے کا چمچ آپ نے ایسٹ ڈال دینی ہے, 1 چائے کا چمچ, یعنی تو بلکہ ابھی تھوڑا سا موسم چینج ہے تو 1 کھانے کا چمچ ایسٹ لے لیجیے گا,
0: ٹھیک
1: ہے. اس کے اندر آپ نے لے لینی ہے تقریباً 4 کھانے کے چمچ آپ نے چینی لے لینی ہے پسی ہوئی, اور اس کے اندر آپ نے 100 گرام کے اتنا آپ نے لینا ہے مکھن, ٹھیک ہے, مکھن لے لیجیے گا. آپ نے حسب ضرورت نیم گرم دودھ لے لیجیے گا, آپ نے ایسٹ ہے, چینی ہے, نمک ہے تو 1 چٹکی, ساتھ میں آپ نے مکھن, اس کے ساتھ آپ نے میدا, تمام چیزوں کو ایک برتن میں ڈالے گا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کو گوندھ دے گا, اچھی طرح سے گوند کے اس کو ڈھک کے آپ نے رکھ دینا ہے. اس کے بعد ایک دفعہ دوبارہ سے بہت اچھے سے اس کو آپ نے گوندنا ہے. اچھی طرح سے گوندنے کے بعد پھر آپ نے اس کی ایک روٹی بنا لینی ہے موٹی سی. اب گلاس سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے, کٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو تھم کے ساتھ آپ نے ہولڈ کا جیسا راہ کرتے وہ کر, ویسے تو ڈونٹ کٹر بھی ملتے ہیں لیکن نہیں, جن کے گھروں میں تو گلاس سے بھی کٹ کر سکتے, ہم نے جب سیکھا تھا تو ہمارے پاس بھی نہیں تھے, ہم نے اسی طرح استعمال کیا. اچھا, اس کو تھم سے آپ نے سوراخ کر کے اب آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا 1/2 گھنٹے کے لیے. اس کے بعد آپ نے آئل گرم کرنا ہے اور بالکل سلو فلیم پہ آپ نے اس کو گولڈن براؤن کر کے نکال لینا ہے, پھر چاکلیٹ کو میلٹ کر کے اوپر چاکلیٹ اسپرنگل اور اوپر پسی ہوئی چینی چھڑک دینا ہے. ڈونٹس تیار ہے.
0: زبردست ہو گیا بھائی, ڈونٹس بنانا ہے بہت آسان اور گھر کے واقعی میں بہت مزے کے بنتے ہیں. بازار میں تو بہت برے ردا ڈونٹس ملتے ہیں, مجھے لگتا ہے آپ کو بن کے اوپر آپ چاکلیٹ رکھی ہوئی ہے تو وہ والا مزہ نہیں آتا, لیکن ردا نے جو آپ کو ریسیپی بنائی ہے مسٹ ٹرائی. اسی کے ساتھ
1: اوون نہیں ہے تو آپ فرائی کرتے ہیں تو زیادہ اچھے بن جاتے,
0: فرائی کر سکتے ہیں. وقت ختم ہو چکا ہے شو کا, سو تھینک یو سو مچ,
1: میری طرف سے پاکستان زندہ باد.
0: زندہ باد.
2: FM 100's time check. It's 1 p.m.

0: फिर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
1: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
0: टापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाए,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचे, वेट से आगे का सोचे।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिब या खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।
5: अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान।
3: अभी आप सुनेंगे जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात FM 100 पर।

0: FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।
1: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
2: It's happening आज भी, so keep up. Bata पर Jazz Cash से 50% cashback और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
4: Easy Paisa लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और Easy Paisa QR से पेमेंट करके 25% cashback हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, सियालकोट से जीती है रोहिला काशिफ ईवी बाइक। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
2: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर Jazz Cash से 50% cashback और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
6: 100 FM.
7: चम चम चम, किताबे लेके निकले हम. अम्मी ने कहा ना रुकना तुम. रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: वाचिका हफ्तेवार लकी ड्रॉ विनर साल कोटवा रोहिला काशिफ ईवी बाइक कटे वर्दी हाँ तवां बे हर हफ्ते कार ईवी बाइक सोन जा सिक्का ऐं बेशुमार इनाम कटे सघो था। बस वाचिका शैम्पू जी बोतल के स्क्रैच करियो ऐं ढेर सारा इनाम कटियो। ट्राई ऑल न्यू वाचिका शैम्पू नर्शेस हेयर नेचुरली।
2: 100 FM अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या जेलेनॉल का

0: Easy Wala Bank
1: 100 FM.
2: ईजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और ईजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। ईजी पैसा डिजिटल बैंक, ईजी वाला बैंक
1: 100 FM।
3: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: वाला बैंक।
1: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
3: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। वी ऑल ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, बट ड्रग्स आर साइलेंटली डिस्ट्रॉइंग आवर ड्रीम्स, लाइव्स एंड आवर फैमिलीज। द एंटी नारकोटिक्स फोर्स, द ANF, इज ब्रेवली फाइटिंग दिस बैटल, बट दे कांट फाइट इट अलोन। They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: फ्रॉड और जाली पैगामात से होशियार रहें। फ्रॉड करने वाले जाली पैगामात और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पैगामात पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम, अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूमात की वेरिफिकेशन का कहा जाए। याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है। आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके। PTA बैंक या सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी ज़ाती मालूमात तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना। याद रखें, PTA बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता। लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक न करें और अपनी मालूमात हरगिज किसी के साथ शेयर न करें। और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें। अपनी शिकायत का इंद्राज complaint.pta.gov.pk या PTA CMS मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या PTA की हेल्पलाइन 0800-55055 पर अपनी शिकायत का इंद्राज करें। व्हाट्सएप पर वसूल होने वाला पैगाम बराह रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें। इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंद्राज 1799 या complaint.nccia.gov.pk पर भी कर सकते हैं। बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbp.org.pk पर विजिट करें। याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ्फुज़ है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी।
5: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
6: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: 100 FM.
1: छम छम छम किताब लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: Digital Bank. Easy Wala Bank.
1: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per JazzCash se 50% cashback. Aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
2: At shopping of 5,000 rupees.
1: Only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhaago!
3: This program is brought to you by
4: Safre Haj mein aapka khidmat guzar. Jahan khwab, wahan HBL.
5: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: And
6: try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
4: And
7: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
8: Kahin anjaane mein aap dehshatgardon ki mali muawnat to nahi kar rahe. Hoshyar rahe, muhtaat rahe. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
9: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू है।
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
3: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
2: स्पेशल तो लग रही है।
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
6: Easy Paisa laya shandar offer. Abhi service se naye shoes kharide aur Easy Paisa QR se payment karke 25% cash back hasil kare. Ye offer mulk bhar ke tamam service stores par dastiyab hai. Aaj hi shopping kare aur cash back ka fayda uthaye. Easy Paisa Digital Bank.
7: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई ना होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालिदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
1: And
9: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
1: And
10: sir sab nitro force ko laga aur jeetta ja.
11: ख्वाब तो सब देखते हैं, बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
12: हमने आप ना कुछ 3 बार मौत देखा।
13: टाइम सी मनु ऐसे ही के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
14: फिर उन्होंने साडिया वीडियो बनाया, सानू मारिया, सब टूटिया।
11: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
15: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा।
11: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
16: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
17: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: Capital Bank, Easy Wala Bank.
1: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
2: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
3: सफर हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है. अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं. सफरे हज में आपका खिदमत गुजार. जहां ख्वाब वहां HBL. शराइत ज़वाबित लागू हैं.
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
5: This program is brought to you by
3: Safre Haj mein aapka khidmat guzar. Jahan khwab wahan HBL.
6: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
7: And try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
8: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet taja.
9: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM 247365. 100. 100.
11: Five times.

0: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
1: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू है।
2: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर Jazz Cash से 50% cashback और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? किसका इंतजार है?
3: भागो!
4: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी Jazz Cash app डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए Jazz Cash है ना?
0: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत जवाबित लागू है।
4: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर Jazz Cash से 50% cashback और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
3: At shopping of 5,000 rupees
4: only. And you're still here? किसका इंतजार है?
3: भागो!
5: 100 FM.
6: चम चम चम, किताबे लेके निकले हम. अमीन कहाना, रुकना तुम. रोज रोज आ

0: डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिबिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamu alaikum Pakistan.
4: Azan-e-Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 ke sab sunne walon ko assalamu alaikum. Karachi aur uske mazafat mein Azan-e-Maghrib ka waqt hua chahta hai.

0: असल आजादी आपके लिए असल आजादी क्या है डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ
1: PDCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000 फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई शर्त ज़वाबित लागू है

0: डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक।
1: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
2: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: Kabhi socha hai ki ab jang ki surat kya hai? Ab jang maidan-e-jang mein nahi, hamare zehnon mein ladi ja rahi hai. Ab dushman ki goliyan barood nahi, malumat hai. और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: facebook.com/fm247365
7: fm247365 You're listening to the greatest radio station in

0: एक्सक्लूसिव वाला बैंक।
1: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रूपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रूपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
4: 100 FM। लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
5: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
7: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्तें तो सवाबित लागू हैं।

0: Civil Bank. Easy wala bank.
1: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
3: Safar-e Hajj ka aagaaz mukammal sukoon ke saath. Wazarat-e Mazhabi Umoor ke official aur khususi banking partner HBL Islamic aapke Hajj ke muqaddas safar mein har qadam par aapke saath hai. Apni Hajj aqsaat ki adaigiyan mulk bhar mein maujood 1700 se zyada HBL branches, digital channels, mobile app, PSID payments ya debit aur credit cards ke zariye aasani se jama karwayein. Safar-e Hajj mein aapka khidmat guzar. Jahan khwab wahan HBL. Sharaito zawabit lagu hain.
1: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
4: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना.
5: 100 FM.
6: चम चम चम किताबें लेके निकले हम. अम्मी ने कहा ना रुकना तुम. रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

0: Bank, easy wala bank.
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: सफर हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू है।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back और नई गाड़ी सिर्फ स्कूल शूज पर। ऐसी ऑफर्स अब कहां?
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
5: यह पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
8: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
7: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
9: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
8: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
7: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हुई।
10: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
8: सिर्फ बातें बनाने से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
10: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाएं,
7: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
8: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
7: आइए वेट से आगे का सोचें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
11: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम ज़राए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हकूमती और निजी शोबे के मुलाज़मीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खास तौर पर मोहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटेबल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
12: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
13: FM 24/7 365 Evening Drive Time with DJ Priscilla.
14: Alright, Ray friends, welcome back to the Evza Radio, listening to FM 100 Pakistan. Today I'm going to be talking also on the dial 10 fantastic words that we need to remove from our lives. And of course, focus on the right ones to make our lives even more meaningful. So stay tuned. Right now is Suja Heather.

0: It's 8 p.m. The Sound Check is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
2: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
3: PDCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शरायत सवाबित लागू है.
4: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
5: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
4: मतलब
5: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
4: स्पेशल तो लग रही है.
5: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
4: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड.
6: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना.
7: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
8: At shopping of 5,000 rupees
7: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
9: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM247365. FM 100.
11: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
10: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
12: इवनिंग ड्राइव टाइम.

0: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: Manshiyat, ek lamhe ki galti puri zindagi ki tabahi. Ice, heroin, chairs ya kisi bhi kisam ki manshiyat, ये वक्ती खुशी नहीं मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात।

0: as you know it, is extinct. This is a new species of music station. The evolution
1: has begun.
0: This is the all-new
2: FM
0: 100. Why change and buy into technology?
3: There's only one station in Maine blazing today's hottest music.
4: The hottest music.
1: You're listening to
4: this station is
0: FM
5: 100's time check. It's 9 p.m.
6: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
7: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर सियालकोट से जीती है रोहिला काशिफ ईवी बाइक. अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
8: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
9: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शरायत जवाबित लागू है.
10: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
11: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
10: मतलब
11: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
10: स्पेशल तो लग रही है.
11: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
10: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
12: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना.
13: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है. मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं. याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे. खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
14: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है.
15: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है.
16: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
17: हमारी जिम्मेदारी है.
18: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें.
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
19: Like us on facebook.com/fm247365.
20: Let's celebrate
21: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
20: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
22: This is

हेलो माइक चेक 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब। क्या हाल है, तबीयत कैसी है, मजे में है जनाब? 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपका और मेरा साथ रहता है, गपशप रहती है, मैसेजेस आप लोग करते हैं, के एच आर स्पेस टेक्स्ट करते हैं, सेंड कर देते हैं 3636 पर। हर तरह की गुफ्तगू, हालांकि सियासी मना करता हूं, पॉलिटिक्स पे कोई बात नहीं, फिर भी होती रहती है। आजकल तो ज्यादा हो रही है, बल्कि लोग परेशान है भाई, ये क्या हो रहा है? अपने इदारों को लेके कोई हुक्म मानने को तैयार नहीं हो रहा, ऐसा क्यों भाई? ये परेशानियां भी हैं, इसके अलावा जनाब और बहुत कुछ। अपने मसले मसाइल आप डिस्कस करें, हल हमने हमारे पास कोई हल नहीं है उसका, क्योंकि किसी चीज का हल नहीं है हमारे पास, हम खुद ही हल हो रहे हैं। हल का मतलब वो वाला हल, डिजॉल्व वाला, उसी तरीके से। लेकिन बहरहाल दुआएं करते रहते हैं, या अल्लाह जो हो अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, आम आदमी के लिए अच्छा हो। अच्छा जनाब, और फ्राइडे फ्राइडे वाले दिन मैं आपको सुनाता हूं 90s के, अर्ली 2000 के पॉप गाने, जो कि कमाल है। इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, हर तरह का म्यूजिक जो है वो हमने रखा है। आगाज करेंगे सज्जाद अली की इस खूबसूरत दुआ से, और वो है कैसे,

0: Get up, it's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show.
1: Star of the show.
0: Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday.
1: Full volume.
0: It's a party that won't end. On FM 100, turn it up, let the music begin.
1: FM 100's where the vibes are proud.
2: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
3: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत तो सवाबित लागू हैं.
4: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
5: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं.
4: मतलब?
5: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
4: स्पेशल तो लग रही है.
5: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
4: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड.
6: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी. सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी. पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है. लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे.

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं 100 और साथ साथ मैसेजेस किए चार स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड कर देंगे 3636 पर। आशा जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारा प्यार दुआएं, सबको सलाम दुआ कह दिया है मैंने, पहुंचा दिया आपका मैसेज। अच्छा जनाब हमारी छोटी सी टीम, नदीम अंसारी हमारे साथ, बिलाल हमारे साथ और हमारे प्यारे से सत्तार भाई दी ग्रेट हमारे साथ, क्या कहने, इसके अलावा उस्मान भाई को नहीं भूल सकते, टेक्निकल हेड हमारे, और इसके अलावा मोहम्मद अली, इनका जिक्र तो मैं जरूर करता हूं। अच्छा जनाब कोई खबर ऐसी नहीं है कि मैं आपको खुशी से सुनाऊं। अगर पहले टेस्ट मैच के हवाले से बात करें, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो हुआ, आराम से शिकस्त हो गई पाकिस्तान, लीड्स में था और लीड ले ली है इंग्लैंड की टीम ने, पहला टेस्ट मैच हम हार गए। हॉकी में उम्मीद थी थोड़ी सी कि चलो यार वो जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें शायद कुछ जीत जाए, लेकिन नहीं, उधर से भी फारिग हो गए हम भाई, कैसे हम तवज्जो ही नहीं मुल्क के ऊपर, आपस में लड़ जा रहे हैं बच्चों की तरह। तो जब तक चीजों पे दारों पे तवज्जो नहीं होगी तो यही हाल होगा, इसी में फंसे हुए हैं कि यार इलाज कराएं कि नहीं कराएं, ये हमारे मसले हैं भाई, ये बेसिक चीज है यार, जो बीमार है उसका इलाज कराएं, खत्म बात। अब सारा सारा दिन दो दो दिन इसमें बहस चल रही है असेंबलियों में, अदालतों में, सारी एनर्जी सारे पैसे सारी सोच बस इसमें जाया हो गई है कि भाई इलाज हमने नहीं कराने देना, अगले कहने हमने कराना, ये है हमारे प्रायोरिटी पे मसले मसाई। आवाम गरीब बेचारी जो पैसे वाले हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो बेचारे मासिस की बात कर रहा हूं मैं, वो लड़ रहे हैं, वो परेशान है भी कहां जाए। तो ये परेशानियां होती रहेंगी, लेकिन हम ये है कि जो दो घंटे हैं कोशिश करते हैं इन परेशानियों को दूर कर आपका टाइम अच्छा से गुजरे। तो बस थोड़ा सा ऐसे जिक्र जो दिल की थोड़ी सी बढ़ास थी वो मैंने निकाल ली, आपसे मैंने डिस्कस कर ली। जब तक मैं आपको बता दूं दोस्तों, यही सोच और इसी तरह अगर हमने अपने मुल्क के लिए काम करना है तो ऐसे ही रहेगा, बाकी आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अच्छा जनाब एक और अर्ली 2000 का हिट गाना मैं आपको सुनाता हूं, इसकी वीडियो भी मेरी बड़ी फेवरेट है, बहुत जबरदस्त, फाखिर महमूद क्या स्टाइलिश और जबरदस्त सिंगर।

0: में खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: वाटिका हफ्त विवाह लकी ड्रॉ विनर साल कोटवा रोहिला काशिफ ईवी बाइक कटे वर्दी आने तमाबे हर हफ्ते कार ईवी बाइक सोने जा सिक्का ऐ बेशुमार इनाम कटे संगोथा। बस वाटिका शैम्पू जी बोतल के स्क्रैच करो ऐ ढेर सारा इनाम कटियो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नर्शेस हेयर नेचुरली।
2: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली गैस पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना। हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट मल्टीपल ड्राइव मोड्स क्रूज कंट्रोल पावर ड्राइवर सीट एलॉय रिम्स और सनरूफ।
2: स्पेशल तो लग रही है
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
4: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
5: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
6: PDCL Flash Fiber आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शरायत जवाबित लागू है।
7: 100 FM
8: चम चम चम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आ

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस कर रहे हैं। और इसके अलावा मेरे पास जो है ना फेसबुक पर बहुत सारे दोस्त जो है ना आस्ते आस्ते जमा हो रहे हैं। रुबाब आ गई हैं, यासिन खान आ गए हैं, हिना खान आ गई हैं, इसके अलावा जनाब एहसन हमारे बड़े प्यारे बॉलर वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हमजा कह रहे हैं अयाज भाई ओल्ड इज गोल्ड, ये तो मैं पहले ही कहता हूँ। और हिना कह रही है कि आप ब्यूटीफुल हो पर हेयर कलर कर रहे हो। मैं इनको समझा रहा हूँ कि इस उम्र में हेयर का सलामत रहना बहुत बड़ी नेमत है, कलर तो बहुत छोटी चीज है। वरना हमारी उम्र में तो लोग जो है ना इस वक्त यह हाल है सर का कि कपड़ा मार के जा रहे हैं और चमकते हुए जा रहे हैं। तो हिना जी बड़ी मेहरबानी आप। और यासीन कह रहे हैं आई लव यू टू यासीन भाई, तबीयत ठीक है ना। और इसके अलावा वसीम अब्बासी, वसीम भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो आज जो है ये मेरी आईडी पर यानी अयाज अहमद की आईडी पर आप जाकर लाइव देख भी सकते हैं और वहां कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। और 90s के अर्ली 2000 के जो बैंड्स हैं, सिंगर्स हैं, सोलो सिंगर्स, उनके बारे में कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और मैं यही उस वक्त अपने फेसबुक के दोस्तों से कह रहा था कि पहले कितने जबरदस्त जो है वो ट्रैक्स आते थे, इंडस म्यूजिक होता था, प्लेटफॉर्म थे ना यार, जगहें थी, लोग जो थे वो आके वहां परफॉर्म करते थे, वीडियोस इतनी अच्छी अच्छी देखने को मिलती थी, एक से बढ़कर एक डायरेक्टर मिलता था। डायरेक्टर की बात कर रहा हूं तो मुझे हाय मेरा बड़ा प्यारा सा दोस्त चुपके से देख रही हूं और इतना मसरूफ आदमी आबिज रजा, आबिज किया हाल है तुम्हारा, ठीक हो, खैरियत से हो। तो मैं बता रहा था 90s के इतने जबरदस्त गाने आते थे, इतने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर आते थे और इसके अलावा वीडियोज इतनी अच्छी देखने को मिलती थी। क्या कहने, ठीक हूं, काफी साल बाद देख रहा हूं बेटा, आंखें चली गई थी या क्या था। और जहीर चंगेजी भाई आ गए, अस्सलाम वालेकुम चंगेजी भाई, वालेकुम सलाम। अरे आबिज भाई वाह वाह मुस्कुरा रहे हो, टिक भी आ गया ब्लू वाला। आबिज भाई पूरे कंप्लीट चल रहे हैं फुल टाइम, ये जो है ना नेट पे फुल बादशाह था इनकी आबिज भाई की। मेहंदी शाह भी आ गए भाई, मैंने आपको पीटीवी के ड्रामे में 2005 में देखा था बेटा, उस वक्त आंखें थी तुम्हारी सही या अब खराब हो गई, क्या है चक्कर, अब नहीं देख पा रहे क्या। मेहंदी भाई देखो आंखों में ड्रॉप्स डालो, इंशाल्लाह सही नजर आएगा सब कुछ। रुबाब आ गई है, नसीबुल्लाल का गाना लगा दो अपना। रुबाब तुम फरमाइशों से बाज नहीं आती, करोड़ दफा कहता हूँ थोड़ा सा, लेकिन चलो आज मैं मान लेता हूँ बात। वैसे मैंने आपके लिए ना एक फारसी गाना एक रखा है अपनी, तो रुबाब जी आपने कल भी मुझे कहा था फारसी गाने का, तो आज मैंने क्यू शीट में रखा है लेकिन थोड़ी सी देर में। लेकिन मैसेजेस इतने सारे आ रहे हैं, नजमा नौशीन आ गई, नजमा नौशीन फैसलाबाद। अरे फैसलाबाद वाली नजमा कैसी हो, ठीक हो। और मेरे बड़े प्यारे से दोस्त इमरान अली भाई, इमरान भाई कितने गायब हो गए यार, इमरान इतनी बड़ी बड़ी हमने ना बातें और प्लानिंग की सब कुछ साइड भी हो जाता, इमरान भाई जो है ना मसरूफ आदमी है। वैसे आपको बस रेडियो के ही जॉब है या और भी हो, बेटा तुम्हारे पास कोई है तो फटाफट हमें दिलाओ, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, जल्दी जल्दी पूरी हमारी यहाँ टीम है सबको दिला दो कोई। सर पे कपड़ा मार के कमाल, अच्छा अबे हाँ यार अपनी तरफ से जुगत मार रहे हैं बाबा, कलर कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं यार, इसमें शक की क्या बात है, जो चीज है वो है लेकिन कलर भी तमीज वाला होना चाहिए। अच्छा मेहंदी शाह सो फनी, मैं क्या ये फनी खराबी है दोस्त, फनी नहीं हूं मैं इसी बात पर। मेरा बड़ा फेवरेट बैंड था ये माइलस्टोन, और इनका एक मैंने कॉन्सर्ट भी अटेंड किया था उस दौर में, और इनका ये ट्रैक जादू आला आज भी सुने तो बहुत अच्छा लगता।

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Late night apne paison se ghar par khana order karna. Ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the Jazz Cash app now.
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
3: मतलब
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
3: स्पेशल तो लग रही है.
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
5: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein. Aur paye free shock Android TV box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. शरायत जवाबित लागू हैं.
6: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें. मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
8: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है. ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है. पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें. मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है. इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे. सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें. जय सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#. अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए.
9: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
10: आप
8: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں، شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرہ سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔

right, जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और अब आप मुझे देख भी रहे हैं आज अयाज अहमद को, अयाज अहमद की आईडी पर, और इसके अलावा जुनेद जमशेद का कोई सॉन्ग सानिया रिजवी कहनी है, बिल्कुल मैं लगा दूंगा जुनेद भाई के तो गाने, बल्कि दो तीन फरमाइशें आ गई, कुलाज बैंड की माहिवाल, इसके अलावा भूलना, और इसके अलावा जुनेद भाई का चेहरा एक गाना था, नहीं आंखें, आंखें जो है वो मेरे पास मौजूद है, मैं थोड़ी सी देर में प्ले करता हूँ, और जिब्रान के भी मैसेज आ गए हैं, जुनेद साहब का एक सॉन्ग, देखो यार एक ही गाना है, मैं एक गाना लगाता हूँ, वो आंखें, बल्कि वो लगा लेते हैं, जुनेद भाई की ज्यादा डिमांड आ रही है तो उनका गाना लगाते हैं। इसके अलावा सबातुल्ला भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं, चलें जनाब एंजॉय करें, मैसेजेस करें 3636 पर और अयाज अहमद की आईडी पर।

0: क्या बात है जनाब, जबरदस्त ट्रैक और जुनेद जमशेद की आवाज, वाइटल साइन। अच्छा ना, मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं और माजबीन रहमान मरफानी, अच्छा जी, और इसके अलावा डॉक्टर मुनीब रहमान, एक तो इतने तवील नाम लिख दिए यार, को थोड़े मरफानी लिख दो, अब वही काफी है। इमरान भाई बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गर्मा गर्म चाय मेरे लिए लेके आ जाते हैं और फिर एनर्जी आ जाती है मुझे। अच्छा जनाब, इसके अलावा जनाब मेरी आईडी पे बहुत सारे दोस्त आ गए हैं, रुबाब के भी मैसेज आ गए हैं, सनम सईदी के भी मैसेज आ गए हैं। रुबाब क्या कह रही है? अच्छा जी, इसके अलावा इफ्फी अंसारी आ गई है, इतने दिनों बाद नोटिफिकेशन आई है, मैंने नहीं देखी, ये आप ही नहीं आए लाइव, मैं अब आ गया हूँ इफ्फी जी, मैं आ गया हूँ, तुम देख सकते हो मेरे। और इसके अलावा खाला गरम मसाला, अरे हाँ यार, आपने बड़े बिल्कुल सही याद दिलाया कि हमारा प्ले था एयरवाइज से खाला गरम मसाला, बड़ा मजे का था वो भी। फरीदा बुरहानुद्दीन के मैसेज, और वो कहनी हेयर आहिस्ता आहिस्ता आपके कम हो रहे हैं, विग लगा लेंगे, कोई मसला नहीं, आजकल तो लोग वैसे ही विग लगा रहे हैं, फैशन हो गया विग वाला, लेकिन अपने बाल हैं ये अभी तक, ये शुक्र है मालिक का। आहिस्ता आहिस्ता तो इंसान की जिंदगी भी जा रही होती, जो जो वक्त गुजरता है इंसान जा रहा होता है, तो इन चीजों पर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा जनाब, और इसके अलावा पूरी घर की रिपोर्ट देनी है, मेरा मोबाइल चार्जिंग पर है, बस देखना कोई ले ना जाए, बंदा चार्ज करा रहा है वहीं से बंदा शॉर्ट हो गया मोबाइल लेके, ऐसा ना होना, इसका खास ख्याल रखना। ये तो वाइटल साइन का तो नहीं, जुनेद जमशेद का अलग से भी ट्रैक, जो वाइटल साइन एक बैंड था जब नया नया था ना आंखें, उसमें ये गाना था, फिर बाद में जुनेद भाई ने अपने अभी सोलो एल्बम बनाया, लेकिन फिर भी हम उनको वाइटल साइन ही कहते, वाइटल साइन। अच्छा जनाब, इसके अलावा 14th अगस्त का प्रोग्राम देखा था, मेरे ख्याल से मसाला टीवी का, सानिया जी उसी की बात तो नहीं कर रही आप, काफी सारे लोगों ने देखा यार। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, सरवत आतिफ खान भी आ गई हैं, सरवत जी कैसी हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? न्यू ड्रामे में कब आ रहे हो सरम जी? बस जल्द इंशाल्लाह, जैसी कोई सीन होता मैं आपको बताता हूं। अच्छा जनाब, 9:58, थोड़ी देर के बाद मैंने आपको टाइम भी बताना है और कुछ देर की जो है वो ब्रेक भी है, और आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि अच्छा स्पेस टेक्स करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर, अपने हवाले से भी बातचीत करें, और इसके अलावा कोई भी और बात करना चाहें तो बिल्कुल आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ड्राइव करें इत्मीनान सुकून के साथ, ड्राइव करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। अच्छा, रात के इस टाइम पे भी बड़ा रश होता है, मैं अभी आ रहा था रात को तो काफी तादाद में जो है वो रश नजर आ रहा था, तो जरा जल्दबाजी आपने नहीं करी, सुकून का दामन नहीं छोड़। अच्छा जनाब, इसके अलावा घर पर लगा, अच्छा ठीक है फिर घर पे तो ठीक है। अच्छा जी, अब वाइटल साइन के बाद जुनेद जमशेद का लगा, मैं लगा दी बस, जुनेद भाई वाइटल साइन एक ही है, ये मैंने आपको फिर जी समझा दिया, अब और इतने सारे हैं, सिक्वेंसर बैंड मौजूद है, कोलाज मौजूद है, शारिक रूमी मौजूद है, शहजाद रॉय मौजूद है, इसके अलावा हेवंस एक बैंड था बड़ा जबरदस्त, वो है टफर देन द रेस्ट, ओए होए पूरी कीशिट में आपको बता, कोमल रिजवी मौजूद है हमारे साथ मतलब गाने में, और इसके अलावा आलमगीर का भी गाना मौजूद है, तो सारे मैंने आपको सुनाने हैं, स्ट्रिंग्स को नहीं भूलना आपने, स्ट्रिंग्स भी मौजूद है, और अली हैदर भाई क्या कहने। अबू धाबी कब आ रहे हैं? जैसी सनम तुमने टिकट वीजा मुझे भेजना, वीजा ही नहीं दे रहे आज, तो जैसे ही आपने मुझे टिकट वीजा करा के देना मैं आ जाऊंगा। अच्छा जी, आपका मसाला का शो बहुत अच्छा था, बड़ी मेहरबानी सरवत जी, बहुत शुक्रिया। कराची में बारिश क्यों नहीं हो रही? मुझे तो लग रहा है कुछ अजीब चक्कर हो गया यार, कब्ज वाली सूरत यार है मौसम की भी, खुल के बारिश ही नहीं हो रही, हल्की हल्की हुई थी को बीच में, देखो तो ना बारिश रहा टिका क्यों ना, बिल्कुल फारिक बारिश, जबकि इस्लामाबाद और पिंडी में सुना बुरा हाल हो गया बारिश का, घरों में पानी आ गया। अच्छा जनाब, गपशप होगी लेकिन साथ साथ टाइम चेक और छोटी सी ब्रेक।
1: FM 100's time check. It's 10 PM.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है, चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस, तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना। तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैसकैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैसकैश है ना।
3: FM 24/7 365 FM 24/7 365 FM 100
4: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
3: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
0: जनाब वेलकम बैक। सुन रहे हैं FM 100 और मिसेस फारूक भी तशरीफ ले आई हैं। माजरत करी थी कि मैं जरा लेट आई। कोई ऐसी बात नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी तो है नहीं वैसे भी और ना स्कूल है। जब दिल करे आप तशरीफ ला सकती हैं। इफ्फी अंसारी भी मुस्तकिल मुझे गानों की फरमाइश करे चली जा रही है और सनम सईदी हंस रही है, वही मुस्कुरा रही है, हंसते मुस्कुराते रहे आप। अच्छा जी, इसके अलावा आप आहिस्ता आहिस्ता जवान हो रहे हैं, मुझे लग रहा है आपकी बैटरी चार्ज हो रही है ना फोन की, तो वो मेरी तस्वीर अब सही नजर आ रही है आपको, ये भी एक रीजन हो सकता है। मोहम्मद अली शेख की ब्यूटीफुल सॉन्ग, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे। अच्छा जनाब, किसी ने रिक्वेस्ट की थी कोलाज बैंक की माहिवाल ट्रैक की, तो लीजिए जनाब ये जबरदस्त सा ट्रैक, मेरा भी बड़ा फेवरेट। इंजॉय करें, मैसेजेस करें 3636 पर और अयाज अहमद की आईडी पर भी आप आ सकते हैं।

राइट जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और इमरान सईद के मैसेज आ रहे हैं, नदीम कॉस्मिक भाई के, कॉस्मिक भाई के जो है वो भी मैसेज आ रहे हैं। कॉस्मिक भाई जो है ना कमाल आदमी है, और जब भी इनका मैं मैसेज देखता हूँ, फाखिर के सॉन्ग अच्छे थे। फाखिर का पहला गाना ही मैंने माही वे उनका मैंने प्ले कर दिया था, उम्मीद है आपने सुना होगा। अच्छा जी, नौमी भाई ने कुछ मैसेज मुझे भेजा है, वॉइस वो मैं आराम से, नौमी भाई आराम से पढ़ता हूँ मैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा हमें अमरीन यहाँ मैसेज करनी है 3636 पर। अमरीन जी क्या हाल है आपके, ठीक है, खैरियत से हैं? सब सुनने वालों को सलाम। अयाज भाई इतनी तारीफें कर दी आपने, इतनी तारीफें कर दी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपके बात करने का अंदाज मुझे बेहद पसंद है, गाने कम और आप ज्यादा बोला कर नहीं करे सरकार, देखें गाने भी प्ले करने होते हैं। अच्छा जनाब, आप बात कर रहे थे हम जवाद अहमद की, और स्पेशली इनका ये ट्रैक ढोलना, और नूर बुखारी इसमें बिल्कुल शामिल है, और ट्रेन भी है और वो माहौल भी है, स्टेशन वाला भी है, तो जरा एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत से गाने को। 90s में ये गाना सुपर डुपर हिट था।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीन। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
4: FM247365
5: Active, yummy,
6: enjoyable,
7: seven. Kya pyaas to suno yaar.

क्या जबरदस्त ट्रैक और बहुत ही आला। अच्छा जनाब, इसके अलावा और बहुत सारे दोस्त भी आ गए। लाखो सही आ गए। लाखो भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? लाखो भाई जो है बता रहे हैं कि हमारी तरफ जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं और क्या कहना चाहिए, बूंदाबांदी जो है वो हो रही है। वाह वाह वाह वाह। लाखो भाई, कहां से आपने जो है वो मैसेज किया ये भी बताएं, उस इलाके का नाम तो बताएं, कौन सी जगह है वो। अच्छा भाई, शानजे शाबी, शानजे शैस वो भी आ गए हैं, और मिर्जा शुजात कह रहे आपने खरी और सच्ची बात की है, जबरदस्त। मैं मिर्जा भाई बस मैं क्या देता हूँ, बाकी फिर अल्लाह से दुआ करता रहता हूँ। अल्लाह, आजकल सच्ची बात और खरी बात जो है ना वो दिल में उतर जाती है और लोग फिर नाराज हो जाते हैं। एक दिन पहले फरमाइश कर रहा हूँ, कल मेरे तुर्की सॉन्ग, कल तो मेरी छुट्टी है, सैटरडे मेरी छुट्टी होती है, तुर्की कौन सा गाना यार, कोई सा भी लगा दूंगा। कोई तुर्की गाना भाई को ने सुन लिया मेरा खास से मरफानी भाई ने, और मरफानी भाई कह रहे हैं कि बस तुर्की गाना लाओ। तो जोया जूबी भी आ गई है और वो चुपके से हमें देख रही है, मैसेज भी करना है आपने, मैं आपको ये बता दूं। अच्छा जनाब, और 2026 में भी बिजली आउट है, और बिजली की क्या बात कर रहे हैं अख्तर भाई, गैस भी आउट है, गैसें हाय हाय मैं क्या बताऊं, टाइमिंग से चल रहा है खाना वाना सब ये चीजें भाई, लेकिन क्या कह सकते हैं, चले जो भी हो, है तो अपना मुल्क ना, अच्छा सोचेंगे अच्छा बोलेंगे तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। साकरन बलोचिस्तान, अरे सरकार, लाखों भाई क्या बात है, बलोचिस्तान की सूरत हाल में जरा मुझे बताइएगा, थोड़ी तरह लोग टेंशन में भी हैं कि बलोचिस्तान की जो देखे जा रहा, बलोचिस्तान भी नहीं जा पा रहे, क्वेटा जाने किसी का दिल चाह रहा है लेकिन वो नहीं जा रहा डर के मारे, रोड का रास्ता बिल्कुल डेंजरस हुआ हुआ, ये सारी चीजें अब खत्म होनी चाहिए। बेटा जी आप रिक्वेस्ट शो शुरू कर दो, रिक्वेस्ट नहीं, इसमें मेरे बड़े फड्डे होते हैं, इसमें बड़ी लड़ाइयां होती हैं, उसके रिक्वेस्ट जी मेरी क्यों नहीं की रिक्वेस्ट, बंदा कहे यार उसकी गाने की रिक्वेस्ट मुझे पता थी कि वो यहाँ है ये, बाकी अब नहीं है, अजीब अजीब रिक्वेस्ट आ जाती है, समझ में नहीं आ रहा था क्या है, लेकिन लड़ाई शुरू हो जाती। अच्छा जनाब, आमिर सलीम के गाने की भी रिक्वेस्ट आई हुई थी, तारों भरी रातें, वाह वाह वाह वाह। लाखों भाई आपके लिए, इंजॉय करें।

0: best of 90s, 80s and today with Ayaz Ahmad.
1: जना वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 आयाज अहमद के साथ और इतने प्यार इतनी मोहब्बत से मैसेजेस के सिलसिले जानी है। अच्छा जी अमरीन दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हैं और जुनून के गाने की भी रिक्वेस्ट। चलें ठीक है मैं थोड़ी सी देर में। अच्छा जनाब और इसके अलावा मुजीब मरफानी जी कह रहे हैं तो मेरा तुर्की सॉन्ग कब लगेगा, मैं बस जैसे ढूंढूंगा जैसे मिलता मैं लगाता हूं। आज तो नहीं

0: party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
3: माजी का हफ्ता वार लकी ड्रॉ विनर सियालकोट तो रोहिला काशिफ ने ईवी बाइक जीती है. हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो. बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
0: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
4: 100 FM.
5: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना.
6: FM247265
7: 247365.
8: Active, yummy,
9: durable,
8: zabardast.
9: Ye pyaas to suno yaar.

हाय जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं फिल्म 100 आयाज अहमद के साथ। साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं 3636 पर। अच्छा जी, सुहेल कह रहे हैं कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 103 रन से हरा दिया है, अब क्या होगा सर? अब दूसरे मैच में हारने की तैयारी होगी? तो ये वाला है। अच्छा जनाब, इसके अलावा आई विल वेट फॉर तुर्किश रीमिक्स सॉन्ग मुजीब मरफानी। अच्छा पता नहीं मैं कहां, चलो कल मैं ढूंढूंगा, मैं जैसे ही मिलेगा ना तो मैं आपके लिए प्ले कर दूंगा। अच्छा फिलहाल मैं सोच रहा हूं कि तुर्किश की जगह अगर कोई फारसी गाना मिल जाए वो मैं आपको सुना दूं तो कैसा रहेगा? मैं जो चेक करने थे, मैंने वैसे एक रखा था फारसी ट्रैक। ये जरा चेक करें मरफानी साहब, ये चेक करें जरा।

कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन है कुछ मजेदार है, म्यूजिक अच्छी है, सुनने में मजा आ रहा है। अच्छा जनाब, जब इस तरह का म्यूजिक में सुना, एक और बड़ा जबरदस्त गाना मुझे नजर आ गया। हाय हाय हाय हाय, आलमगीर साहब को कैसे भूल सकते हैं,

हाय क्या बात है जनाब, बंगाली और उर्दू मिक्स और फिर आलमगीर साहब की आवाज, क्या कहने जनाब, क्या कहने, जबरदस्त जनाब। एक और खूबसूरत ट्रैक,

राजना वेलकम बैक सुन रहे हैं फिर 100 और टाइम जो है ना बस गुजरता चला जा रहा है. ओनली तुर्किश एंड आई लव इस्तांबुल. तुर्की और मैं क्या कुर्बान में वाली मरफानी भाई क्या कहने और कह रहे हैं कि तुर्की नहीं तो अरबिक. परेशान क्यों है मैं क्यों परेशान होगा भाई मेरे कौन सा को खर्चा लग रहा है. परेशान मैं नहीं होता भैया कल नहीं तो दो दिन बाद मैं तो जब दिल करेगा मैं लगाऊंगा. मुजीब मरफानी भाई आप टेंशन आप ना लो एंजॉय करो ये वाला ट्रैक देखो जरा सुना. अब मैं थोड़े थोड़े जरा गाने आपको सुनाता हूँ क्योंकि टाइम जो है वो स्पीड के साथ गुजर रहा है.

क्या गाना था यार, अपने वक्त का हिट गाना, लेकिन अफसोस मैं पूरा नहीं सुना पा रहा आपको, क्योंकि टाइम ना जरा जल्दी जल्दी जा रहा है। ये भी यार हिट गाना था।

जी जबरदस्त ये ट्रैक गयासुद्दीन बलबन, थैंक यू वेरी मच गाना पसंद करने का, बहुत शुक्रिया। लोनली इज द नाइट, एयर सप्लाई क्या बैंड था भाई, ये भी कमाल। और अगर बैंड की बात करें तो एक और बैंड हमें याद आ गया, स्ट्रिंग्स, और इनका ये गाना सर की ये पहाड़। वैसे तो ये कवर सॉन्ग है, किसी और ने गाया लेकिन इन्होंने भी कमाल गाया।

राइट जनाब, इसी के साथ ही चाहेंगे आपसे इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अयाज अहमद को दें इजाजत। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, रब रखा, खुदा पामान।

0: की ड्रॉ विनर। सियालकोट से जीती है रोहिरा काशिफ ईवी बाइक। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
1: facebook.com/fm247365 FM 247 365

ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जमीन पर, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी जमीन पर।

Aja. वेलकम बैक कहेंगे सुने ओ कदी कर के बहाना सानू मिल माही वे। अच्छा आपको ये बता दूं ये सलीम जावेद साहब ने क्या गाया है जबरदस्त और इनके साहबजादे जो जी ने मिलकर ये ट्रैक दोबारा से रीमिक्स किया था और बहुत जबरदस्त किया और आपको पसंद भी आ रहा है। और बेसिकली ये ओरिजिनली पाकिस्तानी मूवी का गाना है 1950 का, बोले बहुत पुराना है। एनीवे जनाब मैसेजेस आपके आ रहे हैं कि चाहे स्पेस आपके नाम आपका मैसेज उसको सेंड करें हम 3636 पर मैसेजेस आपके आना शुरू हो गए। मगर अगर हम अगर मगर बहुत करते हैं, खैर मैं भी कहूंगा मगर पहले मैं आप लोगों को सवाल फ्लोट कर दूं। सवाल बड़ा आसान सा है, बहुत आसान सा। इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं जनाब, मोबाइल स्मार्टफोन व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब ये सब हम यूज करते रहते हैं, तो आपको पता भी है कि ये भाई हमने कब से यूज करना शुरू किया है व्हाट्सएप के बारे में, क्योंकि व्हाट्सएप पर बड़ी चैटिंग वैटिंग हो रही होती है, बातें बातें हो रही होती हैं, पूरी पूरी रात बातें हो रही होती हैं। चले भाई बात करते हो, जितना दिल चाहे बात करो। एक वक्त होता था वैसे कि जब टेलीफोन्स होते थे तो उसके बिल भी आते थे भाई, इनकमिंग आउट गोइंग सब, तो उस वक्त जो है वो अगर बिल ज्यादा आ रहा था कौन सी कॉल कितने मिनट की है चेक करो भाई, बिल में चेक हो रहा होता था पैसों के हिसाब से। लेकिन अब व्हाट्सएप में पैसों वैसों का मसला ही नहीं है, कितनी बातें करनी है करते रहो भाई करते रहो, तस्वीरें भेजते रहो, वीडियो कॉल कर लो, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। 1970s की एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज थी, टेलीविजन सीरीज मतलब ड्रामा था, अंग्रेजी ड्रामा जिसका नाम था स्टार ट्रैक। ये 70s का एरा की ये मूवी है और ये उस जमाने 1970 में, सोचें यार उस जमाने में ये मतलब 70 के बाद की ये है, ये आपको डेट भी बता दूंगा। तो उसमें जो है वो स्पेस शिप दिखाया है, तो उस जमाने में लोगों के लिए नई नई चीज और हैरान और परेशान यार ये क्या हो रहा है, तो उसमें जो है वीडियो कॉल के जरिए वो बात भी करते हैं एक दूसरे से, तो वो चीज जो है उस वक्त ऐसा लगता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उस वक्त जो चीजें दिखाई जाती थी फ्यूचर की, तो लोग बड़े हैरान और परेशान होते थे, और आज देखें कि गली गली मोहल्ले में जो है वीडियो कॉल्स हो रही होती, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो आप वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। इसी तरीके से आजकल के दौर में फी जमाना अगर देखा जाए तो हमें फ्यूचर मूवीज जो साइंस फिक्शन मूवीज हम देखते हैं उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिस पर हम देखकर हैरान हो रहे होते हैं, अबे भाई ये होगा भी। होलोग्राम देखें कि बंदा सामने खड़ा है और बातें हो रही हैं लेकिन बेसिकली वो है नहीं वहां पर मौजूद, वो किसी और मकाम पर है। तो ये इसका भी सिलसिलाकार जो है वो हो चुका है, इजाद हो चुका है, होलोग्राम पर बातें बातें होती हैं, बहुत सिलसिला है इस तरह का काम हो रहा है, लेकिन ये अभी पब्लिकली लॉन्च नहीं हुआ। और भी बहुत सारी उड़ने वाली गाड़ियां ये तमाम चीजें जो हम देखते हैं यार ये हो सकता है, अब इस पर यकीन भी हो गया है आजकल के दौर में और ये लॉन्च भी हो जाएंगी, हो सकता है हमारी अगली नस्लें जो है वो उड़ने वाली गाड़ियों में घूम रहे हो। तो ये लॉन्चिंग के हवाले से कि ये कब वजूद में आया और लोगों के हाथ में व्हाट्सएप स्टार्ट हो गया, ये आपने बताना है कि व्हाट्सएप जो है वो कौन से सन में लॉन्च हुआ था, ये सवाल है आज का। वैसे आपको मैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसी हवाले से देता रहूंगा। ये सवाल मैंने आपसे कर लिया, अब आपके मैसेज की जानिब जाएंगे, देखेंगे कौन कौन है हमारे साथ। सबसे पहले फीता काटा है जनाब हमारे प्यारे से राजदुरात यूसुफ भाई ने पापाउच से और कह रहे हैं कि तमाम सुनने वालों को सलाम और एफएम 100 की तमाम फैमिली को सलाम, खुसूसी तौर पर हमारी प्यारी सी आंटी को, चाची को, अरूसा को, गुलबानो को और तमाम डॉक्टर्स को और मेरे वालिद मोहतरम को, गुफरान भाई को, उन्होंने सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ भाई, कैसे हैं, ड्यूटी पर होंगे। अमीन चार्ली आगे हैं, सलाम के बाद कह रहे हैं नदीम भाई शो ऑसम बिंदास बोले तो जगाज, स्वीट फैमिली को सलाम और प्यारी सी बहन
मुश्क को और समनीन बलोच को ट्रैक डेडिकेट कर दें। ओके जी कर देंगे, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। एंड संजू इज हियर, संजू के मैसेज भी आ गए हैं जनाब, कह रही है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नदीम सलामती और आफियत की अनगिनत दुआएं। कहिए काबिल एहतराम मेजबान कैसे मिजाज और हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर अज़ियत बुरे लोगों से नहीं मिलती, बाज़ औक़ात हम अपने खैर के मुस्तहिक लोगों से भी जख्मी हो जाते हैं, ज्यादातर होते हैं। ये बड़ी सच्चाई है, कोशिश की इख्तिताम तक साथ रहूं, आपकी कोशिश का हम इंतजार करेंगे। वैसे कोशिश

0: वैसे कोशिशें ही कामयाब होती हैं, वादे तो अक्सर टूट जाते हैं। क्या पुराना घिसा पिटा डायलॉग मारा है। लेकिन ये जो आपने बात की है, बाज़ औक़ात हम अपने खैर के मुस्तहिक लोगों से भी जख्मी होते हैं। आजकल तो यही सीन चल रहा है फुल टाइम, जो अपने है ना वही बैंड बजा रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता जब आगे खुली की खुली रह जाती है यही। और माशाल्लाह आज तो खुशी की आवाज आपके लहजे से उमंड उमंड के झलक रही है। मेरे मजाक को दिल पर मत लीजिएगा, लगता है चलते चलते माही आ ही गया। बल्ले बल्ले कौन सा मजाक किया आपने, मुझे तो पता ही नहीं। कह रही कल मेरे बहुत सारे मैसेज खा गए थे इसलिए हाथ हौला रखा हुआ, आज आप तेज भी रखें आपकी मर्जी है, तेज रखें हम सारे मैसेज पढ़ते हैं। वो अलग बात है कि हमारे अंदर सबर का पैमाना बहुत कम है। मैसेज जब आप कर रहे होते हैं मिसाल के तौर पर कि आपके चार पांच छह मैसेज आ गए, तो मेरी कोशिश ये होती है कि दो मैसेजेस पढ़ लिए तो बाकी दूसरे मैसेजेस पढ़ लूं, और फिर दूसरे राउंड में और दो पढ़ लूं, फिर तीसरे राउंड में दो और पढ़ लूं। लेकिन यहां पर जनाब सिलसिला एक हार ऐसा है, संजू आपको नहीं कह रहा कसम से, अपने ऊपर मत लेना, ये मैं आम बात कर रहा हूं सब लोगों के लिए। तो खैर लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूं मैसेज। हैं जी, हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे मिजाज हैं, ढेरों सलामती की दुआएं आपके लिए और तमाम हसीन समातों के लिए भी। वाह वाह, मुतारिफ करवाया गया, लॉन्च किया गया उर्दू में, आपने मुतारिफ बता दिया सही नौरीन मैना, बहुत बहुत शुक्रिया और दुरुस्त जवाब दिया आपने। जरा गिनती पर गिने कितने साल हो गए, और अप्रीदी अयुब अप्रीदी भाई कह रहे जिगर सभा गोल को मोश को मानोर को इना गोल को एक सॉन्ग प्ले कर दो। आज आप ना भी कहते तो मैंने ये सोचा हुआ है कि जैसे जैसे मैं गाने चलाता रहूंगा हर एक को जो है जिन जिन की डेडिकेशन है रूटीन डेडिकेशन और वो मैं खर्च देने आएंगे, यानी कि समझ रहे ना आप। हैं जी, हैं जी। और मिर्जा साहब आ गए ने गुज्जर खान, तो क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को भी मेरा आदाब। और जबरदस्त सॉन्ग राता आ गईया राता चांदनी दिया, मूड जबरदस्त हो गया। नदीम भाई ये सवाल तो आपने बहुत आसान किया है, अरे वाह वाह, थोड़ा मुश्किल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी आपने भी दुरुस्त जवाब दिया है, जाहिर है ये सवाल ही जो है वो जेंजीज वाला है, तो हर एक को पता होना चाहिए भी। लेकिन भाई बहुत से लोग ऐसे हैं कि बस टोन दास नहीं सकता। चलिए इस सवाल के साथ एक सवाल जोड़ देते हैं कि मैंने आपसे सवाल पूछा है कि व्हाट्सएप कब मुतारिफ हुआ या कब लॉन्च हुआ, तो वो सन बताना है आपने, तो सब लोग सन बता रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी बता दें कि यूएसबी, ठीक है ना, यूएसबी जो हम यूज करते हैं अक्सर डेटा इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए, वो कब लॉन्च हुई थी, वो कब मुतारिफ हुई थी,
1: ये बताओ तो मानी।
0: और आगे बढ़ते हैं। समी शहजादा आ गया है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप। सलाम टू गुफरान भाई एंड ऑल लिसनर्स। आज मैं न्यू हैंड फ्री बनाई है, उस पे शो सुन रहा हूँ, वीआईपी साउंड आ रहा है। बनाइए से क्या मुराद है यार, खरीदिए या खुद बनाइए। और एक गाने की फरमाइश, नदीम भाई मैंने एक जगह जॉब की बात करी है, दुआ कीजिएगा वहां से बुलावा आ जाए, इंशाल्लाह जरूर आएगा। और बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है आपने भी, खुद बनाता हूँ। है भाई, तो भाई हमारे भाई नजर नहीं आ रहा यार, खुद बनाते हो तो एक इन फ्री बहुत अच्छी सी मेरे लिए भी लेकर आओ यार, कैसी बातें कर रहे हैं यार। अरे माशाल्लाह से बड़े टैलेंटेड हो यार आप तो। अच्छा भाई इकतबास आ गया नौरीन का, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और अलीमुद्दीन जोसफ जाय साहब अब एरिया कराची से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब, प्लीज जायज रही है न्यू जहान की कोई आवाज में गाना सुनवा दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अयूब आफरीदी खिताबुल्लाला समी शेख नजीम कुरैशी इमरान रियाज और वाजिबुल एहतराम वालिद मोहतरम की खिदमत अकदस में मेरा अकीदत भरा सलाम पेश कीजिएगा, हर लबा दुआ को नई ख्वाहिशात के साथ। अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब एफबी एरिया से हैं जी। मैं मौजू पर लिखा करती हूँ, सबके जवाब शामिल हो गए मगर मेरा जवाब बहुत पीछे रह गया। हाँ देखिए मैं ना संजू आपको एक बात बताऊँ,

0: ये चीज आगे ये खूबी है कि जो मैं बात कर रहा होता हूं, बहुत कम मेरे ऐसे लिसनर्स हैं, उनमें आप भी शामिल हैं, कि जो मौजू के हवाले से या जो टॉपिक कर रहा होता हूं या जो मैं चर्चा कर रहा होता हूं उसके हवाले से कोई ना कोई बात जरूर उसमें इजाफा करते हैं। नौरीन महना भी हैं उसमें, आप भी हैं और भी बहुत सारे हैं ऐसे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों के मैसेजेस पढ़कर। लेकिन राउंड पूरा हो जाता है तो मैं पढ़ता जरूर, यानी कि समझ रही है ना। हाँ, तो बस डिलीट मत किया करें, रेनी दिया करें, पढ़ेंगे जरूर पढ़ेंगे। और अस्सलाम वालेकुम लगता अस्सलाम वालेकुम लंगड़े आम ने चौसे आम से कहा, भाई तुम खामोश क्यों होते हो? लंगड़ा आम ने कहा, अगर कुदरत की इजाजत मुझे होती तो सर्दियों के मौसम में सबको एक टांग पर नचा देता। ऐसे में शाह कैसे हो शहजादे, ठीक ठाक हो? और लतीफे यार साथ में भेज रहे हो, खैर जी अच्छी बात है। और क्यों ना गाने की जानिब जाया जाए यार, लेकिन जाते हैं। अच्छा भाई, अभी जो ट्रैक हम आपको सुना रहे हैं, इस ट्रैक को हम डेडिकेट करेंगे हमारे मुजीबुर रहमान साहब, मलकानी थे मखलानी, मतलब उनकी एक कास्ट थी और उनके साहबजादे वो भी डॉक्टर, बच्चों का भी नाम लिया था। तो अब वो मैसेज तो खैर अभी मेरे सामने है नहीं, तो उन्होंने सिंधी गाने की सही फरमाइश की थी, तो उनकी फरमाइश है सही सराखों पर एलो फड़ो। और उसके साथ साथ हमारे जितने भी सिंधी बहन भाई सुन रहे हैं उन सबको भी डेडिकेट करेंगे। अच्छा गाना यार, ओके ट्रैक
1: रिकॉर्ड्स
0: एलो फड़ो
1: एक नई रंग।

Welcome back, Whistle Baby, Whistle Baby. आसे मदर को सुना मैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। भाई अमीन के मैसेज का मैंने ट्रांसलेशन कर लिया और वो कह रहे हैं कि नदीम भाई ये जो दो कौवे तारों पर बैठे हुए हैं इससे ट्रांसमिशन जो है उसका बैंड बज गया है, तो लिहाजा उनको भी एक गाना डेडिकेट कर दें। और जनाब एक बगैर नाम के मैसेज आया है, अभी ट्यून इन किया है और अभी सो रहा हूं, कल टर्किश लगाना लाला, कल अगर शो किया तो जरूर चला देंगे भाई, हमने नाम ही नहीं लिखा। और हमारे यूसुफ भाई का मैसेज आ गया है और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम भी कहा है और ओके भाई भी कहा है, जीते रहे मुस्कुराते रहे। नदीम भाई ओके गुड नाइट, आपकी वजह से जागता हूँ वरना ऑफिस जाता हूँ, कल टर्की सॉन्ग लगाना। अरे मेरे शहजादे आप जागते हैं, आपकी मोहब्बत आपका प्यार हम अभी लगा देंगे आपके लिए, मगर अपना नाम तो बताइए, आप फौरन से बेशतर नाम बताइए और आपके लिए टर्किश गाना लगाऊंगा मैं, जबरदस्त किस्म का, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, और बहुत जल्द लगाऊंगा, बस आपके मैसेज का इंतजार है। और अयूब लाला फरमाते हैं जिगर, शेख साहब फरमाते हैं अरे शेख साहब आगे भाई, कि एक मासूम सी ख्वाहिश है मेरी, लंबी खामोशी, सफेद कपड़े और रोते हुए लोग। अल्लाह अकबर, भजन शेख साहब को मेरी जानिब से कह दीजिएगा आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो, सबने जाना है यार। हाँ अलबत्ता ये खामोश लोग होंगे या नहीं होंगे ये इसकी गारंटी नहीं है, यानी कि समझ रहे ना। अरे मुजीबुर रहमान बर्फानी साहब आपका मैसेज है, ठीक है जनाब हम आपने बिल्कुल नहीं सुना, सुनते रहिएगा और मैं भी ऑफिस जाता हूँ यकीन मानिए आपकी तरह, तो बस आपके लिए टर्किश गाना जो है एक गाने के बाद चलेगा, क्योंकि अभी मैं एक गाना चलाऊंगा उसकी डेडिकेशन होगी उसके बाद फिर आपके लिए गाना चलाएंगे, सही है। और वाह भाई वाह, यूएसबी के बारे में भी बता दिया भाई, सही जा रहे हो यार तुम सब, टेक्निकल बंदा है ना, हैंड फ्री भी सही कर लेता है समी, इससे सही जवाब आया भाई। तो भाई तुम्हारे इसी जवाब पर जो है हम चलते हैं एक ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक जो है हम डेडिकेट कर रहे हैं यार अयूब आफरीदी की जानिब से सबा गुल को और हिना गुल को और मुश्क को और कह रहे हैं लाला की ये सॉन्ग इनको डेडिकेट कर दें तो जीबीएन बहुत खुश होगी।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको हो डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग भाई आज तो सारा गोल भी गायब है यार बिना गोल भी गायब है लाला आपको ट्रैक डेडिकेट होते थे लेकिन आज आप नहीं किया यानी कि समझ रहे ना इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। खैर जी मैसेजेस तो आपके आ ही रहे हैं मिर्जा साहब की कहने पे ने जियो लाला मेरा शहजादा नदीम भाई लाजवाब सॉन्ग सजाद अली साहब की आवाज है। मेरे भाई को गाने पसंद है वैसे मिर्जा साहब जो है ना सॉन्ग लवर्स हैं म्यूजिक लवर्स जिसको म्यूजिक सुनते रहते हैं। तो जनाब बात हो रही थी टेक्नोलॉजी के हवाले से और तरक्की के हवाले से और स्पेशली जो है वो 2000 के बाद से जो तरक्की हुई है कमाल की हुई है और क्या कमाया है लोगों ने यार क्या कमाया है इस हवाले से। मतलब अगर आप गूगल को ले लें आप फेसबुक को ले लें आप यूट्यूब को ले लें जिन्होंने इनको बनाया है कमाल बनाया जनाब कमाल बनाया। अच्छा खैर अब ये एक सवाल जो मैंने आपसे किया है कि आपने ये बताना है कि व्हाट्सएप जो है वो कब मुतारिफ करवाया गया कब लॉन्च हुआ। तो उसके साथ साथ एक और सवाल जोड़ देता हूँ मतलब इससे भी हो सकता है नॉलेज में इजाफा हो कि ये इसके फाउंडर कौन है व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है। मुझे अचानक जहन में आया मैंने जिक्र किया ना यूट्यूब का और FB का तो मुझे इनके फाउंडर का नाम जहन में आया तो फिर मैंने बोला ओए यार पूछ लो। अच्छा नदीम भाई एक अचानक से सिस्टम चेंज हो गया है मेरी वाइफ के रिश्तेदार आ रहे हैं और कल वैसे भी सैटरडे है और अपना दिल भी नहीं कह रहा था कि ऑफिस जाने का तो मुझे परेशान से वगैरह तो मतलब ये जो ट्विस्ट आया है इसका मतलब ये हुआ कि आप सुन रहे हैं। चले हम कोशिश करेंगे कि आपको आज ही वो टर्किश गाना सुना दें और आपको इस्तांबुल याद करा दें। वैसे अब मुजीब साहब इस्तांबुल क्यों याद आ रहा है लगता है हमारे भाई बड़ा घूमे वहां तो मिसेज रहमान के साथ गए थे या अकेले गए थे ये भी बताइएगा यानी कि समझ रहे ना आप इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। हाय हाय बड़े दिनों बाद ये गाना मुझे बहुत याद आ रहा है तो ये गाना भी चले चलाएंगे। खैर अभी नौरीन की जानिब से हमने संजू को ट्रैक भी डेडिकेट करना है उसकी खामोशी बता रही है कि हमारी कोई बात बुरी लग गई है तो सॉरी भाई। हाय हाय समी इतने समझदार कब से हो गए हो जब से मंगनी हुई है बहुत समझदार हो गए हो

मुझे एक अरबी गाना याद आ रहा है, वो भी चलाने का मूड हो रहा है मेरा, लेकिन खैर समी साहब ने जो है दुरुस्त जवाब दे दिया है। सब इन उनका कमाल है। ओए होए, ये बात सही कह रहा है, जब से इसकी मंगनी हुई है और फोन पर जब बातें बातें करता रहता है ये, थोड़ा सा अकलमंद हो गया है ये दुल्हन की वजह से। भाई हमारा उसको जो है बहुत बहुत सलाम कह दीजिएगा दुल्हन को, मिसेज होने वाली समी को, यानी कि समझ रहे ना आप। अच्छा जी, हाँ भाई दुल्हन, तुम्हारी अम्मी दुल्हन ही कहेंगी ना, दुल्हन आ गई। भाई अच्छा हुआ आज आपने जो है समी की होने वाली दुल्हन का नाम बता दिया इन्होंने, लेकिन अभी हम उनका नाम नहीं लेंगे, समी की होने वाली दुल्हन ही लेंगे, जब वो दुल्हन बन जाएंगी तो हम नाम लेंगे समी। ये उसकी एक वजह है तो मैं बताऊंगा। अल्लाह ताला नजरे बच से बचा के रखे सबको, मैं भी चाहता हूँ कि नजरे बच से बचे रहो मेरे शहजादे। हैं जी जी, हैं जी। और गुड अदा इस्तांबुल जाता हूँ और फिर जाएंगे इंशाल्लाह, मुस्लिम कंट्री से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे हवाले से जो है ना शरारत आ रही है मेरे दिमाग में, अच्छी बात है। वहाँ का माहौल सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छी बात है जनाब, बस इस बार हमें साथ ले जाइएगा, आपका माहौल और अच्छा कर देंगे। सुनो, MPA आसिफ मूसा के साहबजादे हुजैफा ने आपको सलाम कहा। अरे भाई वालेकुम अस्सलाम, हुजैफा साहब क्या हाल है, और आपने जो उनके लिए सॉन्ग चलाया था वो उनको पसंद आया था, अरे बड़ी अच्छी बात है। सुने हो, इतवार को मैं आपका शो नहीं सुन सकूंगा, हुजैफा के पास जा रहा हूँ, माशाल्लाह से ईद मिलादुन्नबी के रैली है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, जाइए जाइए, बिल्कुल जाइए। सलीम मेमन साहब का ये मैसेज मैंने पढ़ा है। तो जनाब अभी आपको एक मैसेज दूंगा इस गाने के थ्रू, चाहे काम हो चाहे दिल हो, जरा धीरे धीरे ही चलना चाहिए। एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है जनाब, और ये ट्रैक जो है हम डेडिकेट करते हैं अय्यूब लाला को, सबा गुल की जानिब से, और एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। ए दिल मेरे चल रहे धीरे धीरे धीरे, मैं भी जरा धीरे से जा गया। खैर जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानेब। नदीम भाई, ये जरा शामिल तो हो जाए, क्या बात है। अलामा इकबाल लिखते हैं कि यूं उम्मीद दिलाते हैं जमाने वाले, कब पलटते हैं भला छोड़ के जाने वाले। और इकबाल कहते हैं, तू कभी देख झुलसते हुए सहरा में दरख्त, कैसे जलते हैं वफाओं को निभाने वाले। है है है है। भाई इतने अफसुर्दा किस्म के शेर क्यों सुना रहे हो भाई, क्या हो गया जरा बताओ तो सही। अच्छा भाई, नौरीन बहना का मैसेज आ गया और उन्होंने भी दुरुस्त जवाब दे दिया, फाउंडर्स व्हाट्सएप के फाउंडर्स का। नवीद साहब कह रहे हैं, नदीम भाई आतिफ असलम हो जाए तो क्या बात है, हो जाएगा। और साहबजादा भी आ गए हैं और कहते हैं कि भाई आस्क व्हाट्सएप का मतलब क्या है, आपसे पूछता हूं मैं। वैसे तो बड़ा ये इसके अंदर ही लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या है। और इसके दो मायने मैं आपको ये भी बता दूं, आप कौन से मायने की बात कर रहे होंगे ये तो हम बाद में ही आप बताएंगे तो पता चलेगा, मैं सबको नहीं बताऊंगा, आप जरा बता दें।

जनाब इनके मैसेज के बाद मैं जो है वो असल में वो जो गाना है ना टर्किश वो ढूंढ रहा हूँ, क्यों नहीं मिल रहा मुझे, मुझे समझ नहीं आ रहा, दिमाग से ही निकल गया भाई। चले इसी बात पर हम एक डेडिकेशन की जानिब जाते हैं और ये डेडिकेशन जो है जनाब हो रही है संजू को नौरीन तौसीफ की जानिब से। और दूसरी डेडिकेशन नहीं, एक ही चलाते हैं अभी पहले, ठीक है जी। और मुझे यकीन है कि आप सबको पसंद आएगी। संजू अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा जरूर, हैं जी। जी हैं जी।

वेलकम बैक कहेंगे सुने जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बता दें जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सुने हो। स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका मेरा साथ है जनाब तीन बजे तक, और तीन बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी है। और आज आपको बड़े अच्छे अच्छे से गाना भी सुनाए जा रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आ रहे होंगे। और मैसेजेस कर रहे हैं आपके एच आई स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636। बट सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि व्हाट्सएप के फाउंडर का नाम क्या है और उसके साथ साथ कि वो कब लॉन्च हुआ, यानी कि कब मुतारिफ हुआ, ये सवाल मैंने फ्लोट किया। और तकरीबन जितने भी जवाब आ रहे हैं आपकी आप लोगों की जानिब से वो दुरुस्त आ रहे हैं, जिसकी बड़ी खुशी हो रही है, यानी कि समझ रहे हैं ना। तो हमारी प्यारी सी बहन नौरीन कह रही हैं थैंक्स नदीम भाई, आपने तो थैंक्स कहा है, आपकी रूहे जान जो है वो गायब है। और जनाब नवाज गबोल उर्फ डॉन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, एक पख्तों का धमाकेदार किस्म का गाना प्ले कर दो। अभी हमने किया तो था, आपने सुना नहीं सकी तेरे महफिल में, लेकिन फिर चला देंगे यार। लेकिन लाला अगर मुझे मैसेज एक करेंगे, अयूब आफरीदी भाई मेरा को एक मैसेज करेंगे कि यार हम सुन रहे हैं, तो फिर हम कर देंगे, उसके बाद नहीं उसके अलावा भी कर दूंगा, ये नहीं समझना कि उनकी वजह से। खैर जी, तो जनाब मैसेजेस के हवाले से बता दिया। अच्छा मैं बड़ा ज्यादा जो है ना वो ये था कि यार गाने जो हैं वो मिल जाए मुझे, और आखिरकार मुझे वो गाना मिल ही गया। तो जनाब इससे पहले कि मुजीबुर रहमान साहब के मेहमान आ जाए, वैसे रात के इस पहर में आपके मेहमान समझ नहीं आ रही है भाई, फिर भी हम आपको जो है वो गाना डेडिकेट करते हैं। बड़ा जबरदस्त सा ट्रैक, और आपने जरूर इस्तांबुल में आइसक्रीम खाई होगी, बड़ा मशहूर गाना है।

वेलकम बैक कहेंगे जनाब, और उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे मुजीब साहब ने सुन लिया होगा। तो सुनियो, अब जो है वक्त भी बड़ी तेजी से गुजर रहा है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास पड़ते हो सर्दियों की शामों में। मैंने ब्लूटूथ से तक आप लोगों को लेकर आया था, फ्लॉपी डिस्क से लेकर, तो थोड़ी सी आप लोगों की जनरल नॉलेज के हवाले से भी बात हो जाए। तो ये नवाज कबूल साहब कह रहे हैं बलोची सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा सर, मेहरबानी होगी। बिल्कुल करेंगे जनाब, बलोची गाना नहीं चला, हम जरूर चलाएंगे। मेहमान कल आएंगे, वड्डा साई वडेरा साई, दो बच्चे के दरमियान। अच्छा खैर, आपने गाना तो सुन लिया, आपको तुर्की याद आया या नहीं आया ये बताइएगा जरूर। तो सुने हो, टेक्नोलॉजी के हवाले से बता रहा था, और ब्लूटूथ मैंने जैसे कि आपको बताया कि 99 में जो है ब्लूटूथ जो है वो मुतारिफ करवाया गया था। यूएसबी के बारे में मैंने आपसे पूछा हुआ है, और इसी के साथ साथ आजकल लोगों की जो जान बना हुआ है वाईफाई, वाईफाई जो है ये कब आया, ये भी एक चले सवाल है, और इसके जवाब नौरीन और समी जो है वो फौरन से पेशतर, मैं ऐसे सवाल करता हूं और उनका जवाब आ जाता है। तो वाईफाई कब जो है वो वजूद में आया ये भी बताइएगा, लेकिन मैं ही बता देता हूं आपको, वाईफाई भी 99 में, यानी कि वाईफाई को भी आए हुए ऑलमोस्ट तकरीबन समझ लीजिए 27 साल हो चुके हैं। और उसके बाद फिर जाहिर है ये 90s का जो लेट 90s की जो मैं बात कर रहा हूं ना, 95 के बाद से कुछ चीजें जो हैं वो आना शुरू हुई, मगर बहुत ज्यादा जो है पब्लिक उनसे फेमिलियर नहीं हुई थी। वो जाहिर है हर चीज इस तरह की टेक्नोलॉजीज को फेमिलियर होने के लिए या मशहूर होने के लिए या आम होने में टाइम लगता है थोड़ा। सो दैट्स व्हाई कि ब्लूटूथ जो है, ब्लूटूथ तो फिर भी बहुत बाद में जो है वो ब्लूटूथ 99 में क्योंकि मुतारिफ हो चुका था, मगर उसके इस्तेमाल की समझ नहीं आ रही थी, और बहुत अरसे के बाद ऑलमोस्ट यू कैन से के तकरीबन 10 सालों के बाद जो है वो एक आम तौर पर ब्लूटूथ जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो ये और वाईफाई भी इसी तरीके से, वाईफाई का भी सिलसिला है, और इसी तरीके से हम गूगल बाबा की अगर बात कर लें तो गूगल बाबा जो है उस पर हम दुनिया भर की चीजें देख लेते थे। अब जो है वो उसका इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता एआई की वजह से थोड़ा कम होना शुरू हो गया है, मगर ये है कि गूगल अभी भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल होता है। तो गूगल जो है वो 98 में जो है वो मुतारिफ हुई थी पूरी दुनिया में, और उसके बाद जो है हमें फेमिलियर होना शुरू हुआ है। कंप्यूटर्स जो थे उनमें भी थोड़ा सा तरक्की होना शुरू हुई, अपग्रेड होना शुरू हुए, और पेंटियम आ गया, फिर पेंटियम 1, 2, 3, 4, 5, और फिर उसके बाद कोर आए वगैरह, ये सारा सिलसिला एक चल रहा है। ये तमाम चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता हो गई और ये चीजें इस्तेमाल भी होने लगी, और इसमें स्पेसेस बहुत आगे। मैंने जैसे कि आपको बताया कि कंप्यूटर जो है उसकी जो स्टोरेज होती थी, रैम और रोम, वो एमबीज में होती थी जब ये आया था, 90s की बात बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन अब आप ये देखिए कि एमबीज जो है, अब तो मोबाइल जो है वो 256 और 1 TB के जो है वो मोबाइल्स मेमोरी के आ गए हैं, बिल्टन जो है 1 TB होता है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ज्यादा, देखो ये आ गया इसका मैसेज, वाईफाई जो है 97 में मुतारिफ हुआ था, हाय हाय, और जब पहला IEEE 802.11 मयार जारी हुआ था। होए होए, मेरी बहन आपको भी माशाल्लाह से काफी नॉलेज है, आप भी फौरन से पेशतर जवाब देती हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। खैर जी, इसी बात पर अभी हम जाएंगे एक और ट्रैक की जानिब। समी सुन रहे हो ना भाई, समी की जानिब से, समी की होने वाली दुल्हन के लिए एक ट्रैक एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनो आप सबको बूढ़े दी कुंडिया मलकू की आवाज आपने सुनी और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। समी साहब आपकी जाने से डेडिकेट हुआ गाना। मैसेजेस कर रहे हैं आपके एच आई स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर मैसेंजर पर। जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे उनसे रिक्वेस्ट है कि चंद मिनटों के लिए मैं लाइव आ चुका हूँ तो लिहाजा फौरन से पेशतर जो है लाइव आ जाए और जहां पर आपने अगर मैसेजेस करने हैं तो कीजिएगा। और नौरीन बहना तो खैर उनके मैसेजेस आ रहे हैं वो भी आ जाए यहाँ पर। समी तुम भी आ जाओ संजू भी आ जाओ सब आ जाओ आए अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अच्छा जी बहुत याद आता है आप चलाओगे चलोगे इस्तांबुल दिल करता है आपका बहुत करता है जनाब लेके जाऊं मजाक से हटके दिल से कहता हूँ हाय सो स्वीट यार बिल्कुल चलेगी लो कैसी बातें कर रहे हैं आप। और भाई हमारे शहजादे भी आ गए हैं डॉन साहब उन्होंने बलोची गाने की फरमाइश की हुई है वो हमने उनके लिए चलाना है बिल्कुल चलेगा। और जनाब तो आज जो मैं फेसबुक वालों को ये बता दूं कि मैंने सवाल फ्लोट किया हुआ है कि व्हाट्सएप के फाउंडर का नाम पूछा है मैंने और वो कब लॉन्च हुआ था यानी कि मुतारिफ कब हुआ था व्हाट्सएप ये आपने बताना है मुझे जो इस वक्त मुझे फेसबुक पर देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। खैर जी आगे बढ़ते हैं। गूगल के हवाले से मैंने आपको बताया कि गूगल की लॉन्चिंग या मुतारिफ जो हुआ वो 98 में हुआ था और इसके हवाले से मैंने आपको ये भी बताया कि हर चीज की जो दवा है वो गूगल के पास होती है गूगल बाबा के पास। तो ये तरक्कियां जिस तरीके से तेजी के साथ माशाल्लाह से हुई है ना 95 के बाद से बल्कि मैं इसको तो 98 से ही कंसीडर करूंगा और उसके बाद 2000 और 2000 से लेकर 2010 तक। अच्छा ये इस हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि ये जो गोरे हैं ये इनका दिमाग बड़ा चलता है भाई। नौरीन मैना यहाँ पर आ गई है और कह रही है अस्सलाम वालेकुम लाइव नदीम बाय जी वालेकुम अस्सलाम जीती रहे मुस्कुराती रहे। तो गोरों के हवाले से यानी कि अंग्रेजों के हवाले से मैं आपको ये एक बात बताऊं कि इनका दिमाग और खसूसी तौर पर जो ज्यूइश हैं यानी कि यहूदी जो हैं वो इस उनका दिमाग जो है वो सोच तो वो अगले 50 साल की पहले से सोच के रखते हैं मगर बाकी जितने भी गोरे हैं जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं ये लोग ज्यादातर मैं यूरोप कंट्रीज और अमेरिका साउथ अमेरिका और फार ईस्ट वगैरह की तरफ जितने भी लोग रहते हैं ये लोग प्लानिंग करके चल रहे होते हैं और खसूसी तौर पर इनकी जो प्लानिंग होती है वो डिकेट्स के हवाले से होती है यानी कि 10 साल का प्लान अप किया होता है कि 10 साल के अंदर अंदर हमने क्या क्या करना है और किस तरीके से इसको चीजों को लेकर चलना है। यही वजह है कि हम अगर मुल्कों को देखें किसी भी मुल्क को आप देखें कि उसके पिछले 10 साल और फिर उससे पिछले 10 साल और फिर उससे पिछले 10 साल 10-10 साल के बाद अगर आप देखें तो उनकी तरक्की जो है वो नजर आती थी कि 10 साल में इन्होंने भाई क्या बिल्डिंगें बना ली है भाई 10 साल में भाई क्या रोड्स बना ली है भाई 10 साल में इन्होंने क्या स्ट्रक्चर जबरदस्त कर लिया अपने मुल्क का। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो चलती हैं और हमारे यहां 10 साल सिर्फ रोड को खुदे हुए लग जाते हैं यानी कि आपको मैं कराची की अगर मिसाल दूं यूनिवर्सिटी रोड देख लें आप कि यूनिवर्सिटी रोड पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट को तकरीबन मेरा ख्याल है 5 साल तो हो चुके हैं और छठा साल शुरू हो गया और अभी भी जो उसको देखकर लग रहा है और जो उसकी स्पीड चल रही है ऐसे लग रहा है कि 2-3 साल और कहीं नहीं गए जिस स्पीड से वो कर रहे हैं। नवाज गबूल कह रहे हैं उर्फ डॉन थैंक यू नदीम भाई और बलोची गाना अयूब लाला को डेडिकेट कीजिएगा बिल्कुल करेंगे जनाब। मिर्जा साहब भी आ गए ने गुजर खान तो कह रहे सब देखने वालों को आदाब तस्लीमात जनाब। तो मैं आप पाकिस्तान के हवाले से जो आपको बता रहा था कि दुनिया जो है वो स्ट्रक्चर बना लेती है और रोड्स बना लेती है मैं और उसके पुल बन जाते हैं पता नहीं क्या क्या काम हो जाते हैं अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ बिल्डिंग्स और रोड्स वगैरह के हवाले से अभी बात कर रहा हूं वरना अगर दूसरी बातों की जानेब आ जाए तो क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में।
तो हमारे यहां ये 10 सालों में एक रोड नहीं बनती। कितनी लेंथ होगी मैं अंदाजन आपको बताता हूं। मेरा अपना आइडिया है कि मैक्सिमम 10 किलोमीटर का सिलसिला होगा, मैक्सिमम आई थिंक कि 10 किलोमीटर या बहुत ज्यादा हो जाएगा तो 12 किलोमीटर यूनिवर्सिटी रोड पर जो एक ये जो लाइन बन रही है। तो आप ये सोचें कि 10 से 15 किलोमीटर का ट्रैक बिछाने के लिए जिस मुल्क को 6 से 7 साल लग जाएं, 8 साल लग जाएं, तो वो 10 सालों में क्या तरक्की करेगा। और आप ये देखें कि पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन जो आ गया इन डिकेड्स में, मतलब 3 डिकेड्स की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, 90s, 2000 और 2010, 2020, ठीक है ना, और 20 से जो है ऑनवर्ड जो है ये 30 तक जाएगा। तो ये डिकेड्स जो हैं वो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई हर लिहाज से, और हम जो है वो एक 15 किलोमीटर की रोड नहीं बना पा रहे। आगे ना समी, गाना कुंडियां सुना तुमने या नहीं सुना? अच्छा, कह रहे नदीम भाई शो के टाइम पर आपको कौन कॉल कर रहा था? मेरे बच्चे कर रहे होते हैं और कोई नहीं कर रहे होते, या बेगम कर रही होती है, और अभी मेरी बेटी का ही कॉल था। बस अभी जब जाऊंगा तो फिर जब उनको कॉल करूंगा तो बोलेंगे बाबा ये ले आए वो ले आए, अगर इसका मतलब वो जाग रही है, वीकेंड है ना इस वजह से। तो अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब भी आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और शहराज अहमद गिलगिती साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाय हाय, हमारे शहजादे आसिफ भाई भी सुन रहे हैं, मुल्ला नेहारी वाले। आसिफ भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और आसिफ भाई आज हम आपको एक गाना डेडिकेट करेंगे। अभी नहीं, अभी तो खैर हम जो है गबोल साहब का गाना डेडिकेट करने वाले हैं। समझ रहा हूं ना, ये सभी कह रहा है, बस समझते रहो। अच्छा जी नदीम भाई, अगले महीने इंशाल्लाह मैं कराची रही हूं, कराची की रोड्स ठीक करवा लें प्लीज, आ रही हूं। अच्छा, जब भी आई हूं रोड्स खराब से खराब तर हो रहे हैं। मेरी प्यारी सी बहना, आप जब इस बार कराची आएंगी तो अपने भाई को जरूर याद रखिएगा, हम आपको घुमाने ले जाएंगे। और कराची में बहुत अच्छे अच्छे रोड्स भी हैं, ऐसी बात नहीं, वो अलग बात है। साकी के मुझे होश नहीं, वरना मैं कुछ भी हूँ, एहसान फरामोश नहीं। इस शहर से मोहब्बत है, प्यार है, दिल है इस शहर में, दिल धड़कता ही इसी शहर की वजह से। मैं बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ अपने पाकिस्तान से, अपने इस शहर से। तो गो के आज ये बहुत बिगड़ चुका है, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा हुआ, एक ना एक दिन तो संवरेगा इंशाल्लाह। और मोहतरम नदीम, मोहतरम भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब अभी हम जा रहे हैं डॉन साहब का गाना डेडिकेट करने के लिए, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे जनाब अयूब आफरीदी को। बलोची ट्रैक है, बड़ा जबरदस्त है, और आप सबको भी पसंद आएगा।

वेलकम बैक कहेंगे जनाब आप सबको। हबीबी, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, रोड्स के हवाले से बात हो रही थी और फेसबुक पर, और अपने अपने तजर्बात जो है वो शेयर हो रहे थे। और नुमान बल्दिया से आ गए हैं, तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है और कह रहे हैं कि मैंने अभी ज्वाइन किया सर, कहाँ मसरूफ थे शहजादे। नदीम भाई, मैं समझा हमारी दूसरी भाभी याद कर रही है। दूसरी भाभी कौन सी है भाई? आप को कॉल आ रही थी तो अच्छा समझते हो भाई, तुम्हारी समझ से क्या हो? हर इंसान अपनी सोच के मुताबिक जो है वो समझता है, जबकि हम अपनी सोच के मुताबिक समझते हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। नवीद भाई आ गए, कह रहे नदीम भाई आतिफ असलम का सॉन्ग आया है मेरा शहजादा, मैं भूल गया था। बिल्कुल चलाएंगे नवीद भाई, आतिफ का मैंने गाना निकाला भी हुआ था यार, कहाँ गया गाना आतिफ का।

0: राजा।
1: अरे गाने तो इसके बहुत अच्छे अच्छे सामने आ रहे हैं यार। झूला झूलाए के बन घट नदिया किनारे निंदिया तू आना। बताओ कौन सा चलाओ नवीद। और मिर्जा साहब कह रहे हैं जबरदस्त बात आपने बोली है नदीम भाई, कराची जिस दिन खुशहाल हो गया उस दिन पूरा पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा बेशक। कराची जो है, मैं कराची को कहता हूँ मिनी पाकिस्तान। मिनी पाकिस्तान इस वजह से कहता हूँ कि हमारे चारों सूबों की जो लोग हैं, जुबानें जो बोलने वाले हैं, चाहे वो हमारे पख्तून भाई हों, चाहे हमारे बलोची भाई हों, चाहे हमारे पंजाबी भाई हों, ये तो तीन सूबे हो गए, सिंधी भाई तो है ही सिंध में है, तो ये चारों सूबे तो यहाँ मौजूद हैं। उसके साथ साथ जनूबी पंजाब से हमारे सराइकी बहन भाई जो है वो यहाँ पर बे इंतहा आबाद है। तो कराची में आपको जो, और ऐसा नहीं है कि ये चंद मिनोरिटी में है, भरपूर तरीके से है, मतलब लाखों की तादाद में, 50-50 लाख, 40-40 लाख, 30-30 लाख इस तरीके से हैं। तो अब आप खुद सोचें कि मिनी पाकिस्तान है ये कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, और दूसरा सबसे बड़ा शहर एज यू नो लाहौर है, लेकिन कराची जिस दिन तरक्की कर गया या कराची पर जिस दिन जो है वो तवज्जो हो गई, तो आप यकीन मानिए कि पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा यार, इसमें जो है ना माही वाला ही गाना मेरा मूड हो रहा है, तो मेरे पास इसके तीन वर्जन्स हैं, मैं जरा उसको चेक कर लेता हूं, आप म्यूजिक सुनें।

भाई हमने काफी आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुना दिया। और जनाब नवान कह रहे हैं ब्लैक ड्रेस में अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मेरी प्यारी सी गुड़िया मैं आ गई, मेरा ख्याल है कह रही है सलाम भाइयो आइता, सलाम सबको चाची आंटी नसरीन पटेल आपी और आंटी को बहुत बहुत बहुत बहुत सलाम। जीती रहो, मुस्कुराती रहो, शाद रहो, आबाद रहो, हमेशा आपके लिए दुआ होती है शो में जब भी आपका जिक्र हो। और आपकी जो चाची के हवाले से तो आपको पता ही होगा, और नसरीन महना जो है वो उसी वक्त आती है जब तुम आती हो, वरना वो खामोशी से ही सुनती रहती है। और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कौन सा है नरीन भाई? अरे नरीन मैना सवाल पर सवाल फेंक दिया, अरे क्या बात है, ये भी हम आपको बताएंगे। मगर फिलहाल जो है नवीद भाई की फरमाइश को जो है हम पूरा करते हैं भाई, उन्होंने आतिफ असलम के ट्रैक की रिक्वेस्ट की थी, तो आतिफ असलम का गाना जनाब आपके लिए। अरे टाइम देखो कैसे निकल गया, गाना सुने फिलहाल आप।

वेलकम बैक कहेंगे जनाब माही वे तेरे दिला दिया गल्ला जबरदस्त। अच्छा जनाब मैंने एक सवाल किया था और उस सवाल का मुझे जवाब भी दे देना चाहिए, हालांकि उसका जवाब जो है समी भी दे चुके हैं, नौरीन भी दे चुकी हैं, आप सब भी दे चुके हैं। सवाल मैंने आपसे ये किया था जनाब कि व्हाट्सएप जो है वो कब वजूद में आया, कब मुतारिफ हुआ। तो व्हाट्सएप जनाब 2009 में 24 फरवरी 2009 में व्हाट्सएप जो है वो आया और फाउंडर जो है इसके वो जॉन कह रहा हूं प्रोनाउंस कर रहे हैं जॉन है जॉन कॉम और ब्रेन एक्टॉन इनके नाम है और जो कि इनके वो हैं। एक महीना तकरीबन हो गया है। अच्छा जी मेरी प्यारी सी बहना अरूसा भी आई हैं और तमाम सुनने वालों से को सलाम भी कहा है उन्होंने और अरूसा के भाई के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मगफरत की दुआ जरूर करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन में खुसूसी तौर पर भी मेरी प्यारी सी गुड़िया बहन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और उसके साथ साथ हमारे बहुत ही प्यारे वाहिद भाई जो है वो भी इस वक्त सुन रहे हैं और उनके बड़े भाई साहब की तबीयत जो है वो काफी नासाज है, तो उनके लिए भी आप सबसे गुजारिश है कि उनके लिए भी आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याबी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और इसके अलावा जितने भी एफ एम 100 सुनने वाले जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं कि उनके अड़ोस पड़ोस में, उनके रिश्तेदारों में, उनके अपनों में अगर कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और मेरे खसूसी तौर पर मेरी प्यारी सी आंटी का नाम जरूर मैं लूंगा, आयशा जी हैं, हमारी प्यारी अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब हैं, हमारे शहाब अंकल हैं, हमारे अयूब जरदारी अंकल हैं और ये तमाम जितने भी बुजुर्ग हमारे जो सुनते हैं उन सबके लिए भी ढेरों सलामती की दुआएं हैं। और इसके साथ ही जनाब अब मैंने आप लोगों से इजाजत भी चाहनी है, इंशाल्लाह ताला मुलाकात जो होगी आपसे इतवार वाले दिन होगी दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। सवाल का जवाब भी मैंने आपको दे दिया है, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और स्पेशली फेसबुक पर जो मुझे इस वक्त देख भी रहे हैं सुन रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते एक बहुत ही जबरदस्त सा ट्रैक है जनाब, ये जरीन नूर की जानिब से हम डेडिकेट करेंगे संजू को और मुलाकात होगी इतवार को। अल्लाह हाफिज़।